भंवरा फूलों की तलाश में निरंतर उड़ता रहता है। उससे सीखिए कि जीवन में भी सुंदर अवसर खोजने के लिए मन को खुला और कदमों को गतिशील रखना चाहिए। हर नया दिन एक नया फूल है जिसमें सफलता की खुशबू छुपी है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष

0: अब युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, एनएसएस वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार चार लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए संयम और शांति से हर परिस्थिति से निकलना चाहिए। ये था आज का कथन। लीजिए सुनते हैं वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती। झरोका मेले जी सुनिए आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 286 6:35 से। 6:45 से सुबह व शाम संगीत सरिता, इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र। इस कार्यक्रम का चौथा भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 और दिन में 2 बजे से त्रिवेणी सुनिएगा। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। आज के फनकार, आज केंद्रित होगा अभिनेता

सैफ अली खान पर। समय सुबह व रात्रि 9:30 से। दस बजे पिटारा में आज के मेहमान अभिनेता निर्देशक पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 से यादों की महफिल और 1 बजे से सुरीला सफर। दो बजकर 30 से वक्त होगा सदाबहार नगमे का। दिन में 3 बजे से सखी सहेली। विषय होंगे विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोली। कहानी पद्मश्री में चित्रकार गोदावरी दत्त। मुझे कुछ कहना है में जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। और उपयोगी टिप्स में कपड़ों की उम्र होगी लंबी। चार बजे से पिटारा में हेलो फरमाइश। पांच बजे से सुनिएगा छाया गीत। 5:30 से तराने नए पुराने।

6:35 से लेकर आएंगे संध्या रंजन में भक्ति गीत। सात बजे से वक्त होगा फौजी साथियों के लिए जयमाला का। सात बजकर 7:45 से इंद्रधनुष में इनसे मिलिए। गजल गायिका डॉक्टर रितु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। रात 8 बजे सुनिएगा हवा महल में प्रहसन, अभिनेत्री से भेंट, लेखक श्री एन राघवन, निर्देशक मुख्तार अहमद। 9 बजे से लेकर आएंगे आपके लिए प्रोग्राम। 10 बजे छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। 3 थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं।

0: आपने अभी सुना श्री रामचरितमानस का भाग 286।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता की इस कड़ी में श्रोताओं आप सबका स्वागत है।

0: आप सबका स्वागत है श्री कालीनाथ मिश्रा जी का।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: आज इस कड़ी में मिश्रा जी कौन सा ताल आप प्रस्तुत करेंगे?
1: मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इस ताल प्रवाह के अगली कड़ी है हमारी तालों का राजा 16 मात्रा 3 ताल मध्य लय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खास बात बताना चाहूंगा श्रोता, हमारा जो अंदाज है बनारस घराना है, उसमें हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं पंडित गुरु आचार्य पंडित राखाल मिश्र दास बाबू। वो बहुत बड़े गवैया हुआ करते थे पिताजी हमारे, 102 साल के थे उनका अंत हुआ। और उनकी बड़ी इच्छा रही कि मैं गाना गाऊं, क्योंकि हमारे सारे भाई गाना गाते थे, बड़े भाई दीनानाथ जी भोलानाथ जी सब गाना गाते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं गवैया बनूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ताल अच्छा लगता था। शायद वो अगर वो नहीं सीखे होते तो हम आज संगीत सरिता में ताल प्रवाह को लेकर नहीं पहुंचते। तो हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी का नाम था पंडित राखाल मिश्र, हमारी माताजी का नाम था चंद्रावती देवी मिश्रा। वो भी हमारे सारे नाना भी गाना गाते थे, दादा दादी भी गाना गाते थे। मैंने ताल को लेकर चुना, तो आज हम मध्य लय के ओर बढ़ते हैं 3 ताल की तरफ। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि इसका आनंद उठाइए, और इसका मैं कुछ एक अलग अंदाज प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
0: बहुत

बड़ा प्रचलित है धीरे-धीरे की तक तबले का अंदाज है। तेरी किटी तक धैर्य धैर्य किटी तक तेरी किटी तक तुन्ना किटी तक तेरी किटी तक तेरे तेरे किटी तक तेरी किटी तक धन्ना किटी तक तेरी किटी धैर्य धैर्य धैर्य किटी तक तेरी किटी तक तुन्ना किटी तक तेरी किटी तक तेरे तेरे जैसे समंदर में लहर उठता है ना, तो धीरे किट का बड़ा

0: आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं दास बाबू। गुदई महाराज
1: जी,
0: उनका धृकित लाजवाब था
1: जी,
0: गुरु जी का थाप का धृकित किशन महाराज जी का, तो घृणक और धृकित का अंदाज

0: पलटा, जैसे बोलते हैं ना कि आप कैसे बोलों को पलटते हैं
1: जी,
0: पर उसका लहजा अच्छा होना चाहिए, बोलों के साथ उल्टा पलटा करना।

अब इसको हम खत्म कैसे करेंगे इस कायदे को? तो हम तिहाई भी बजा के खत्म कर सकते हैं, टुकड़ा बजा के खत्म कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा है,

0: कालीनाथ जी, आपने पलटे का नाम लिया, इस सिलसिले में मुझे जानने की इच्छा हो रही है, बनारस के कुछ खास पलटे होंगे, अलंकार होंगे, कायदे होंगे, पेशकार होंगे, फर्द होंगे, इसके बारे में कुछ बताएं।
1: दास बाबू, एक्चुअली बनारस ही नहीं, सारे घराने, अजराला घराना हो, लखनऊ घराना हो, फरुखाबाद घराना हो
0: जी,
1: पलटे तो सब में होते हैं। अगर आप कोई कायदा ले रहे हैं
0: जी,
1: उसको जब तक विस्तार नहीं करेंगे तो आप कैसे बजा पाएंगे, उसका विस्तार तो करना पड़ेगा मुझे, उसी को कहते हैं पलटा।
0: अच्छा,
1: रहा फर्द का सवाल, तो फर्द एक अलग अंदाज हो गया, वो मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। तो श्रोता, हमने तीन ताल की प्रस्तुति की और मैंने पहले भी कहा था कि सामता प्रसाद जी गुदई महाराज जी ने बहुत योगदान दिया है फिल्मों के लिए। उनका जन्म के बारे में बता दूं कि बनारस के लाजवाब कलाकार थे, उनका नाम था सामता प्रसाद, लेकिन बाएं का ऐसा स्टाइल था, बाया ऐसा गुदगुदाते थे कि उनका नाम रखे, अनोखेलाल जी का भी नाम रखे और इनका भी नाम रखे विलायत खान साहब, उनका नाम था अनोखा मिश्रा।
0: अच्छा,
1: हाँ, पर उनका नाधिन धिन्ना ऐसा था अनोखेलाल जी का कि उन्होंने खान साहब ने, विलायत खान साहब ने झाला में रखा कि यार तुम अनोखे हो एकदम। उसी तरह से कि बाएं का काम ऐसा गुदई महाराज जी दिखाते थे, तो उनका नाम गुदई गुदई गुदई गुदई महाराज पड़ गया। तो एक श्रोता हो, चलिए हम थोड़ा फिल्मों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि फिल्मी संगीत भी हम सुन लेते हैं थोड़ा उसका अंदाज। तो बड़ा सुंदर गाना है, नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, तो एक बार बजा के सुना देता हूं। नाचे मन मोरा मगन धीगना धीगी धीगी, ये खास गुदई चचा का बोल है।

0: ਵੇਖਦਾ
1: ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी चौथी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

नमस्कार, यह है आकाशवाणी उज्जैन। समय हुआ है सुबह 7 बजे का और हम आपके लिए लेकर आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है। आइए अपने दिन की शुरुआत उस परमपिता के चरणों में ध्यान लगाकर करें, जो कालों के काल हैं और समस्त जगत के आधार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ₹8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग भोपाल से। 9:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। नए फिल्मी संगीत का विशेष प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 सुनिए सिंहस्थ संवाद अमृत घट बरसे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। 10:15 पर सुनिए फोन इन प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। 11:00 आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम। मुंबई से रंग तरंग कार्यक्रम होता है 11:00। 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। 1:00 2:00 सुनिए फिल्म संगीत। 2:30 पेश किए जाते हैं 2:30 पर। सखियों का अपना प्रोग्राम सखी सहेली सुनिएगा 3:00। 4:00 आप सुनेंगे हेलो फरमाइश। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में 5:00 सुनिए युवा श्रोताओं की अपनी पसंद का कार्यक्रम युववाणी। 6:00 भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 7:00 भोपाल से 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। 7:21 पर अपने उज्जैन केंद्र से लेकर आएंगे आपके लिए मालवी गीतारी गूंज। 8:00 सुनिएगा प्रोग्राम सुर्खियों में। 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत। उर्दू समाचार सुनिए 9:15 पर। 9:30 पर प्रोग्राम होगा आपकी फरमाइश जबकि 10:00 सुनिए गीतों का गुलदस्ता। 10:30 पर प्रोग्राम होगा राग रजनी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। 8:00 आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भव्य, अलौकिक और आपदा मुक्त संघर्ष के लिए तैयार हो रहा उज्जैन। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में होंगे शामिल। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से।

0: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के भव्य, दिव्य, अलौकिक, आकर्षक और आपदा मुक्त आयोजन के लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन को 945.20 करोड़ रुपए की लागत से नए एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात दी। ये 5.30 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को सहज आवागमन की सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल कालिदास अकादमी में आयोजित होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि सिंहस्थ धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा मेला होगा।
1: सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक दो एलिवेटेड रोड का हमने भूमि पूजन किया लगभग 1000 करोड़ की लागत से। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा, पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है।
0: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मैहर में 48 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से सांदीपनी विद्यालय, 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से ताला में शासकीय महाविद्यालय भवन, 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से अमरपाटन में 30 सीटर बालक छात्रावास तथा आवास का लोकार्पण किया। उन्होंने 21 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्यों तथा 19 करोड़ से अधिक की लागत से जनपद पंचायत मैहर, अमरपाटन और रामनगर में जलगंगा संवर्धन अभियान से जुड़े 1069 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 2.51 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस कंट्रोल रूम तथा 1.47 करोड़ की लागत से जूरा में नए शासकीय हाईस्कूल भवन और परशुराम धर्मशाला भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मैहर स्थित मां शारदा माता मंदिर पहुंचकर विधि विधानपूर्वक मां शारदा का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने मां शारदा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए कहा कि मां शारदा लोक के निर्माण से मैहर में धार्मिक तीर्थाटन में वृद्धि होगी, जिससे जिले में स्थानीय लोगों के लिए रोजगारों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी के लिए कृत संकल्पित है।
2: हमारी सरकार ने पहले नक्सलवादियों को समाप्त किया प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी धार्मिक नगरों से हमारी सरकार ने 19 नगरों से दारू की दुकानें बंद की है। हमारे अपने परिवार के माध्यम से हम सब संकल्पित हैं। मैहर में भी दारू की दुकानें, शराब की बंद हुई। भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए, हर प्रकार से नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 550 प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ग्लोबल स्किल पार्क का भ्रमण करेंगे, इसके साथ ही अकादमिक लैब का अवलोकन कर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की जानकारी लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भेंट और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को तैयार करने से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श भी करेंगे। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 10 सितंबर तक समरसता संकल्प अभियान एवं समरसता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में कलश रथ यात्रा सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले में आज से गांव-गांव और शहरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं धार और विदिशा जिले में भी 10 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। राजधानी भोपाल के RCVP नरोहना प्रशासन तथा प्रबंधकीय अकादमी में आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सर्वांगीण उत्थान, आजीविका संवर्धन तथा सामाजिक सुरक्षा के

ये एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका शुभारंभ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर करेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि तारीख बढ़ने से देश भर के योग्य युवाओं को इस अनोखे युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में रजिस्टर करने और हिस्सा लेने का एक और मौका मिलेगा। 18 से 30 साल तक की उम्र के युवा, जिनमें हायर एजुकेशन संस्थानों के छात्र, वॉलेंटियर और युवा प्रोफेशनल शामिल हैं, युवा संगम के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। छतरपुर के नौगांव में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि खजुराहो में 33 मिलीमीटर पानी बरसा। मंडला में 35, मलाजखंड में 16 और जबलपुर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। सीधी और टीकमगढ़ में भी 7-7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज पन्ना में बारिश का रेड और सतना, कटनी, दमोह, मैहर और छतरपुर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले दो दिनों तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत को जीत या ड्रॉ से पूल में शीर्ष स्थान हासिल होगा और वह अगले मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं मंगलवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 6-1 से जीत दर्ज की थी। इस जीत ने विश्व कप में भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत 1974 के उद्घाटन विश्व कप में स्पेन पर 4-1 की जीत को पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम ने जनपद के सचिवों और रोजगार सहायकों को VBG रामजी से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 21 अगस्त को पुनासा विकासखंड के ग्राम अटूट खास में अधिकारियों का दल पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद करेगा। डिंडोरी में लगातार बारिश के चलते कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जोगी टिकरिया स्थित नर्मदा पुल और नर्मदा डैम घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में POP और रासायनिक पदार्थों से मूर्ति निर्माण पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। दमोह में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जिले में जल्द ही दमयंती चना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। सागर में सागर संभाग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बम्होरी रेगुआ ग्राउंड पर क्रिकेटर क्रांति गौड़ और रणजी खिलाड़ी अक्षत रघुवंशी तथा आर्यन पांडे को सम्मानित किया गया। विदिशा में एग्रीस्टेक अभियान के तहत पात्र किसानों की 100% फार्मर ID बनाने के लिए 20 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। क्रिएटिव श्योपुर के तहत NRLM KCTC केंद्र में पोषण एवं परंपरा महोत्सव का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम के HRC के शासकीय कन्या महाविद्यालय और महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्यक्तित्व विकास, रोजगार मार्गदर्शन और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के OT टेक्नीशियन के 288 पदों पर 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उससे हुई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भव्य, दिव्य, अलौकिक और आपदामुक्त सिंहस्थ के लिए तैयार हो रहा उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण समारोह में शामिल होंगे। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

बाबा महाकाल की पावन अलौकिक और दिव्य नगरी अवंतिका से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। गुरुवार की एक खूबसूरत सुबह आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच लेकर आए। आज 20 अगस्त का ये दिन हमारी उज्जैनी के लिए बेहद खास और संदेश वाहक है। आज जहां एक तरफ हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर सद्भावना दिवस मना रहे हैं, जो हमारी अवंतिका की आपसी भाईचारे की परंपरा को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर आज का दिन हमें उज्जैन की प्राचीन खगोलीय विरासत से लेकर हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहने का बड़ा संदेश देता है। तो आइए बाबा महाकाल का स्मरण करते हुए करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत इस मधुर शिव भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए उज्जैन और आसपास की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार शाम उज्जैन पहुंचकर आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कालिदास अकादमी में होमगार्ड और SDRF की आपदा प्रबंधन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़, आगजनी, भवन हादसे और सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 945 करोड़ रुपये और 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 5.5 किलोमीटर लंबे एविलेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात दूसरी खबर की। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी के लिए सतीगेट मार्ग को नया स्वरूप देने की तैयारी तेज हो गई है। आगामी 7 सितंबर को निकलने वाली बाबा महाकाल की शाही सवारी से पहले इस मार्ग के विकास कार्यों को गति दी जा रही है। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए मार्ग को पहले से तैयार करने की योजना है। सवारी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए मार्ग के विकास और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब एक धार्मिक यात्रा की खबर। उज्जैन में बुधवार को गोगाजी महाराज की भव्य छड़ी यात्रा निकाली गई। गोरखनाथ परंपरा से जुड़ी इस यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी छड़ी और निशान के साथ सहभागिता की। यात्रा रणमुक्तेश्वर मंदिर से शुरू होकर मां बगलामुखी धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और धार्मिक आस्था देखने को मिली। अब एक विशेष धार्मिक आयोजन की खबर। आज मंगलनाथ मंदिर में भगवान

0: कमलनाथ को 20 किलो चांदी की जलधारी अर्पित की जाएगी। श्रावण मास के दौरान होने वाले इस विशेष धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। चांदी की जलधारी भगवान शिव को समर्पित की जाएगी और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ इसे अर्पित किया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंगलनाथ मंदिर में इस आयोजन को विशेष माना जा रहा है। अब बात एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान के समापन की। मक्सी रोड स्थित पवासा के हजारे हनुमान मंदिर परिसर में 11.25 लाख चिंतामणि पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न हुआ। 7 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। पूर्णाहुति के अवसर पर बर्फ से निर्मित अमरनाथ पार्थिव शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया गया। इस दौरान सिंहस्थ 2028 के निर्विघ्न और सफल आयोजन की कामना की गई। धार्मिक अनुष्ठान के समापन पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर सुख समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना की। अब गांव से उज्जैन तक निकली आस्था की यात्रा की खबर। श्रावण मास के अवसर पर गंगेड़ी गाँव के अन्नपूर्णा मंदिर से महाकाल मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। डीजे और ढोल की धुन के साथ निकली इस यात्रा में गांव की महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल को जल अर्पित किया। मां अन्नपूर्णा आयोजन समिति द्वारा पिछले 11 वर्षों से इस कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी ग्रामीणों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में भाग लिया। अब बात महाकाल लोक में चल रही सांस्कृतिक संध्या की। महाकाल लोक में श्रावण भादव मास के दौरान चल रही महाकालेश्वर सांस्कृतिक संध्या की 10वीं प्रस्तुति में इंदौर के कुबेर माहेश्वरी ने भक्ति गायन की प्रस्तुति दी। उनके भक्ति गीतों ने महाकाल लोक के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सांस्कृतिक संध्या में श्रद्धालुओं और शहरवासियों को संगीत और भक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियाँ देखने सुनने का अवसर मिल रहा है। अब शहर के यातायात और सड़क विकास से जुड़ी खबर। नानाखेड़ा चौराहे से शांति पैलेस तक सड़क के एक तरफ का मार्ग 28 अगस्त तक खोलने की तैयारी है। मार्ग के खुलने से इस क्षेत्र में आवागमन करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं शांति नगर से नीलगंगा तक चौड़ीकरण का काम 31 दिसंबर तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। शहर में बढ़ते यातायात और आगामी सिंहस्थ को देखते हुए सड़क विकास से जुड़े इन कार्यों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरें। इन्हीं खबरों के साथ समाचार पत्रों से मैं फिलहाल इतना ही।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
0: श्रोताओं, आज 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है, जिसे पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। राजीव जी का सपना था भारत को कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक और 21वीं सदी से जोड़ना। अगर हम अपनी उज्जैनी की बात करें तो हमारी महाकाल नगरी सदियों से समरसता, सद्भावना और सभी को गले लगाने की संस्कृति के लिए जानी जाती है। आज जब हम अपने उज्जैन को डिजिटल और स्मार्ट सिटी के रूप में बदलते देखते हैं, चाहे महाकाल लोक की हाईटेक व्यवस्थाएं हों या यहाँ के युवाओं का आईटी और आधुनिक तकनीक से जुड़ाव, तो राजीव जी की वही दूरदर्शिता याद आती है। उज्जैन की माटी का तो स्वभाव ही आपस में प्रेम और सौहार्द बांटना है। आइए सद्भावना की इसी अवंतिका परंपरा को नमन करते हुए सुनते हैं ये सुंदर गीत।

श्रोताओं, 20 अगस्त 1977 को नासा ने वायजर 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, जिसने सौरमंडल के सुदूर ग्रहों के रहस्यों से पर्दा उठाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान की बात आती है तो पूरी दुनिया की नज़र हमारी उज्जैनी पर टिकती है। हमारी अवंतिका को प्राचीन काल से ही ग्रिड ऑफ द वर्ल्ड और भारत की कालगणना की राजधानी माना गया है। राजा विक्रमादित्य की ऐतिहासिक वैधशाला हो, जिवाजी वैधशाला की सम्राट यंत्र जैसी अद्भुत संरचनाएं हो, या यहाँ से गुजरने वाली कर्क रेखा, हमारी माटी ने सदियों पहले दुनिया को ग्रहों की गति और समय की गणना करना सिखाया था। वायजर 2 की खोज हमें अपनी इसी उज्जैनी की महान खगोलीय और वैज्ञानिक विरासत पर गर्व करने का अवसर देती है। आइए इसी गर्व और उमंग के साथ सुनते हैं ये प्रेरणादायक गीत।

साथियों, आज 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस भी है। 1897 में आज ही के दिन सर रोनाल्ड रॉस ने ये खोज की थी कि मलेरिया बीमारी मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलती है। सावन के इस पावन महीने में जब दूर दूर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हमारी अवंतिका नगरी पहुंचते हैं, तो एक मेज़बान के रूप में हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारा शहर पूरी तरह स्वच्छ और रोग मुक्त रहे। बारिश के इस मौसम में अपने घरों के आसपास पानी न जमा होने दें, कूलर और गमलों की सफाई रखें और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं, क्योंकि जब हमारा उज्जैन स्वच्छ रहेगा तभी यहाँ आने वाले श्रद्धालु और हम सभी

श्रोताओं, आज के ये तीनों विषय हमारी अवंतिका नगरी से सीधे जुड़ते हैं। सद्भावना दिवस हमें उज्जैन की पारंपरिक समरसता बनाए रखने की सीख देता है। वाइजर 2 की वर्षगांठ हमें अवंतिका की महान खगोलीय विरासत की याद दिलाती है और विश्व मच्छर दिवस हमें अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की प्रेरणा देता है। एक जिम्मेदार उज्जैनवासी होने के नाते आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने शहर में सद्भावना फैलाएंगे, अपनी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे और अपने पास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। साथियों, समय की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और बातों ही बातों में आज का सुप्रभात उज्जैन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज हमने उज्जैन की पावन माटी के संदर्भ में सद्भावना, खगोल विज्ञान और

आरोग्य के महत्व पर चर्चा की। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक और नई ऊर्जा से भर देंगी। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और शांति से परिपूर्ण रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सुनते हैं आज का ये अंतिम और मोटिवेशनल सॉन्ग।

साथियों, इसी के साथ सुप्रभात उज्जैन का आज का ये खास अंक यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है कि आज की ये प्रस्तुति आपकी सुबह को भक्ति, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा से भर पाई होगी। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपकी उद्घोषिका हिमानी आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह ठीक 7:20 पर फिर होगी मुलाकात आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में, सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। आप हमें न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने उज्जैन को स्वच्छ रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा, ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

0: जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई। India's position

0: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल उली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
3: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे

0: 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्सलवेन में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
4: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
5: 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा।

0: Media rankings, adds the Economic Times. A Hindustan Times headline writes about the Supreme Court asking NTA about the progress in exam reforms plan. A headline in the Tribune cites a transformative move launched by India Post to test the feasibility of last mile delivery to the country's most remote and inaccessible corners, which says, where the dakya cannot go, a drone can. In its developmental commitment to the state of Palestine, India to build hospital in West Bank seeks to deploy field hospital in Gaza, states the Hindu. On Bangladesh Prime Minister's possible visit to India, Prime Minister Modi assures him of an honorable reception, is another headline in the Tribune. New US immigration rules may mean greater scrutiny for Indians with expanded definition of public charge, reports the Asian Age. And finally, the Times of India refers to a study saying people with no high BP, diabetes or smoking habit lived nearly 13 years longer without dementia than those with all three risk factors. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves four multi-tracking railway projects covering eight districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears four-laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstel, Finn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 2 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से रूपा झा और जबलपुर से मनीषा साखरदांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कुछ आवाजें समय के साथ खो नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों के भीतर एक स्मृति दीप बनकर जलती रहती हैं। कुछ जीवन उम्र की लंबाई से नहीं, अपने संकल्प की ऊंचाई से बड़े होते हैं। वो मिट्टी धन्य हो जाती है जहां वो पैदा होते हैं, क्योंकि अपनी मातृभूमि के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे शहीद बंता सिंह संखवाल। बंता सिंह का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब के जालंधर जिले के संगवाल नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम बलवंत सिंह था, लेकिन आगे चलकर वो बंता सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता सरदार बुधा सिंह एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके विचार अत्यंत ऊंचे थे। उनका परिवार अपनी राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। यही कारण है कि बचपन से ही बंता सिंह ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सीख लिया था। माता गुजरी देवी के संस्कारों ने उन्हें गढ़ने का काम किया। बंता सिंह की

माध्यमिक शिक्षा उनके गांव और पास के प्राथमिक विद्यालय में हुई। वो बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। इसके साथ ही वो बेहद साहसी और न्यायप्रिय थे। उन दिनों भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांव में निर्धनता थी, किसानों पर अत्याचार हो रहे थे और युवाओं के सपने दम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे बंता सिंह का बाल मन इन परिस्थितियों को समझने लगा था। जब वो डीएवी स्कूल जालंधर में पढ़ रहे थे, तभी कांगड़ा जिले में भूकंप आया। बंता सिंह घर से जब पढ़ने जाते तो भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज की बोरियां ले जाते। धीरे धीरे बंता सिंह युवा हुए और उन्होंने देखा कि उनके अनेक साथी बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जा रहे हैं। उन्होंने भी विदेश जाने का निर्णय लिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। लेकिन ये एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये यात्रा एक योद्धा की यात्रा साबित हुई, जो अपने भीतर एक नए युग का सूर्य लेकर चल पड़ा था। अमेरिका में रहते हुए ही उनके भीतर क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ।

विदेशी सरजमी पर रहते हुए बंता सिंह ने महसूस किया कि भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने गदरी लहर में कूदने का फैसला कर लिया। गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना ने पुस्तक मेरी राम कहानी में लिखा, हमारी सभी विपत्तियों की जड़ हमारी गुलामी है, इसे खत्म करने के लिए हमें शूरवीरों की जरूरत है। उनके इस आह्वान पर सबसे पहले अपना नाम पेश करने वालों में प्रमुख नाम भाई बंता सिंह का था। धीरे धीरे बंता सिंह गदर पार्टी के एक विश्वसनीय कार्यकर्ता बन गए। इसी बीच सन 1914 का साल आया, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। गदर पार्टी के नेताओं ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अवसर के रूप में देखा। निर्णय हुआ कि सभी क्रांतिकारी भारत लौटेंगे और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ेंगे। बंता सिंह भी अपने साथियों के साथ भारत लौट आए। उस समय किसी ने नहीं

तरह बंता सिंह लगातार क्रांति गतिविधि में सक्रिय थे। संगवाल में उन्होंने एक मजबूत क्रांतिकारी केंद्र स्थापित कर दिया था। ये दुआबा क्षेत्र का मुख्यालय बन गया था। यहाँ महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, करतार सिंह सराभा, हरनाम सिंह टुंडीलाट, बीबी गुलाब कौर, बाबा साहेब सिंह और मान सिंह सियालकोटी जैसे क्रांतिकारी अक्सर आया करते थे। बंता सिंह द्वारा स्थापित ये केंद्र पंजाब में गदर आंदोलन की रीढ़ साबित हुआ। बंता सिंह के जीवन का मात्र एक उद्देश्य था, भारत की आजादी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कपूरथला के शस्त्रागार पर हमला कर दिया और हवलदार भगवान सिंह को अपने साथ मिला लिया। 25 अप्रैल सन 1915 को उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नगल कलां होशियारपुर के जेलदार चंदा सिंह की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार तिलमिला उठी। 82 गदर क्रांतिकारियों पर साजिश का पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन बंता सिंह फरार हो चुके थे। गदर क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से बैठक की तथा हथियार जुटाने के लिए अमृतसर जिले के मननवाला रेलवे स्टेशन के पास वल्ला पुल पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की योजना बनाई। इस दल का नेतृत्व बंता सिंह को करना था। 11-12 जून सन 1915 की रात को बंता सिंह ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और 6 सर्विस राइफल्स और 200 कारतूस अपने अधिकार में ले लिए। इस हमले में उन्होंने 2 सिपाहियों फूल सिंह और चतर सिंह को मार दिया। वहीं जेलदार कपूर सिंह की हत्या की कोशिश में भी उनका नाम आया। इस घटना के बाद ब्रिटिश शासन में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सरकार ने बंता सिंह पर भारी इनाम घोषित किया। बंता सिंह को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल सा बिछा दिया गया। गांव-गांव में उनकी तलाश शुरू हुई। बंता सिंह उस समय अपने गांव के आसपास गुप्त रूप से रह रहे थे, लेकिन अब भी वो अपने साथियों से संपर्क बनाए हुए थे। वो लगातार भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, लेकिन उनके एक निकट संबंधी ने धन के लालच में आकर अंग्रेज अधिकारियों को उनकी सूचना दे दी। इस मुखबिर के विश्वासघात का परिणाम हुआ कि बंता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे मुकदमे के दौरान बंता सिंह जरा भी घबराए नहीं और पूरी निर्भीकता के साथ अपने क्रांतिकारी विचारों को अदालत के सामने रखा और देश के लिए अपनी निष्ठा जताई। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से लेकर फांसी की सजा तक उनका 11 पौंड वजन बढ़ गया था। 12 अगस्त सन 1915 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: नमस्कार, FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी उज्जैन है और मैं हूँ आपके साथ आपकी उद्घोषिका हिमानी। स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत में। सुबह के 9 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे हम और आप जुड़े रहेंगे फिल्मों के खूबसूरत नगमों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले गाने के साथ।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं कारवे को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म जब वी मेट से ये सदाबहार नगमा।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिए छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: श्रोताओं अब आगे बढ़ते हैं फिल्म 12th फेल के इस सुरीले और प्यारे से नगमे की ओर।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.np.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
2: श्रोताओं अब पेश है फिल्म स्त्री 2 का ये ताजा और लोकप्रिय गाना।

कुछ बातें होंगी, कुछ गीत होंगे और खूब सारी यादें। आज सुबह 10:15 से लेकर 11 तक सुनिए कुछ बातें कुछ गीत। बात करने के लिए हमारा स्टूडियो नंबर है 07344054191। श्रोताओं, अब फिल्म संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म चलते चलते के इस खूबसूरत गाने को।

श्रोताओं, इसके साथ ही सुबह के बज चुके हैं 9:30 और हमारे आज के फिल्म संगीत का वक्त यहीं समाप्त होता है। यह है आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। अब मुझे दीजिए इजाज़त आपकी उद्घोषिका हिमानी को। सुनते रहिए आकाशवाणी, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी आरजे हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। आज 20 अगस्त है और गुरुवार की इस खूबसूरत और ताज़ा सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हफ्ते के बीच का ये दिन अगर बॉलीवुड के ऑल टाइम फेवरेट और सुरीले गानों के साथ शुरू हो तो मूड एकदम सेट हो जाता है। अगले आधे घंटे तक हम बॉलीवुड के ऐसे सदाबहार और जोशीले गानों का मजा लेंगे जो आपकी सुबह को मिठास और मस्ती से भर देंगे। तो बस अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के इस बेहद मज़ेदार ट्रैक के साथ।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, चलिए गुरुवार की सुहानी सुबह को थोड़ा और रोमांटिक और सुरीला बनाते हैं। जब बात हो 2000 के दशक के क्लासिक मेलोडीज की, तो ये गाना सीधे दिल के तारों को छेड़ देता है। फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से सोनू निगम और अलका याग्निक की मखमली आवाज़ में सुनिए ये खूबसूरत नगमा।

आप जुड़े हुए हैं हिमानी के साथ बॉलीवुड बीट्स में FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्यार और एहसासों का ये सफर आगे बढ़ रहा है। अब वक्त है एक ऐसे गाने का जो दिल को सुकून और गहरी तसल्ली देता है। फिल्म तमाशा का ये बेहद खास गाना अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की जादूगरी से भरा है, तो आपकी सुबह को एक अलग ही गहराई दे देगा। चलिए एंजॉय कीजिए।

0: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
1: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
0: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
1: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
0: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
1: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
0: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
2: एक भाई दर देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
3: श्रोताओं, अब गानों की इस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा रेट्रो स्वैग, जैज और विंटेज अंदाज जोड़ते हैं। फिल्म परिणीता का ये गाना आपकी बीट्स और सुनीता राव की अलग आवाज़ के लिए आज भी उतना ही ताज़ा लगता है। सुनिए ये क्लासिक और जादुई नगमा।

श्रोताओं अब सुनिए फिल्म रॉकस्टार का ये आइकॉनिक गाना और एआर रहमान का संगीत आपकी सुबह को यादगार बना देगा। मोहित चौहान की रूहानी आवाज में सुनिए ये खूबसूरत गीत।

0: जाएगी।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को

0: पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
0: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
0: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
0: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
0: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर गुरुवार का ये आधा घंटा आपके साथ इन खूबसूरत गानों के बीच कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है बॉलीवुड बीट्स ने आपकी सुबह को एकदम तरोताज़ा और ख़ास बना दिया होगा। अब अपनी दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाज़त, अपने दिन को मुस्कुराते हुए इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। FM 102.5 MHz पर अब आप सुनेंगे सिंहस्थ संवाद अमृत खट बरसे का एपिसोड 8, आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति।
1: अमृत कार्यक्रम अमृत घट बरसे, आज सुनिए अमृत घट बरसे की 8वीं कड़ी। लेखक डॉक्टर राम कुमार अहिरवार, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढूंढियाल और परिकल्पना अनवार अहमद खान की।

नमस्कार। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के पौराणिक महत्व और इस पुण्य सलीला की वर्तमान स्थिति की चर्चा के बाद आज हम उज्जैनी के वैभवशाली अतीत की चर्चा करेंगे। उज्जैनी श्रुतियों से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में समान रूप से व्याप्त है। ये वो नगरी है जिसे महाभारत में महाकाल तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए लगभग सभी पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में उज्जैनी की गिनती 7 मोक्षदायक पुरियों में की गई है।

0: काल गणना के केंद्र के रूप में उज्जैनी की चर्चा हम कर चुके हैं। इसकी और भी कई विशेषताएं हैं जो इसे मिले कई नामों से परिलक्षित होती हैं। महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय में संस्कृत प्राच्य विभाग से संबद्ध डॉक्टर पूजा उपाध्याय।
1: कुमुदों की बहुलता होने से इसे कुमुदवती कह दिया, पद्म के कारण इसे पद्मवती कह दिया, सर्वत्र पुष्प दिखाई देते थे यहाँ तो इसे पुष्प करंडिनी कह दिया, और ये सभी को आनंदित करती थी इसीलिए इसे नंदिनी भी कहा। उज्जैन में प्राचीन काल में अत्यंत ही समृद्धि और वैभव विद्यमान था, क्योंकि यहाँ के भवन स्वर्ण कंगूरों से युक्त थे, इसीलिए साहित्यकार इसे कनक श्रृंगा भी कह देते हैं। ये उज्जैन बार बार उजड़ा और बार बार बसा, इसलिए इसे प्रतिकल्पा भी कह दिया। स्वर्ग के समान इसकी तुलना करते हुए इसे अमरावती भी कहा। और कालिदास ने तो इस नगरी की विशालता को विशाला पद से और अमरावती पद को स्वर्ग के कांतिमान खंड से अभिहित कर दिया।

0: उज्जैनी मूल रूप से संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है विजयिनी, अर्थात विजय की नगरी या विजयी नगरी। ये नगरी इतनी प्राचीन है कि इसके अतीत का शुरुआती सिरा ढूंढना बहुत मुश्किल है।
1: वेदों में हम देखें तो अवंती और शिप्रा के कुछ संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं। हालांकि विद्वानों के इस विषय में मतभेद है, फिर भी ऋग्वेद में अतिक्षिप्रेव विद्यति, यजुर्वेद में देखें तो शिप्रे अवे पयः, और तैत्तिरीय ब्राह्मण में अवंती स्थावंती स्त्वावंतु, अवंती देवी सुहवा में अस्तु, ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं जो हमें प्राप्त होते हैं।
0: पौराणिक आख्यानों के अनुसार ये नगरी बहुत प्राचीन है। सभ्यता और संस्कृति के इस केंद्र को विश्व का नाभि स्थल कहा गया है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि का आरंभ यहीं से हुआ था। मालवा के इस क्षेत्र में पाषाण युगीन मानव द्वारा प्रयुक्त हथियारों के गोलाश्मों का मिलना इस विचार को पुष्ट करता है कि ये क्षेत्र जीवन के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। प्रख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के अतीत पर जमी समय की गर्द को बुहारने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कई उत्खनन किए और इनमें मिले अवशेषों के आधार पर अतीत की कड़ियों को जोड़ने का भगीरथी प्रयास किया। डॉक्टर वाकणकर के शिष्य और एक समय उनके सहयोगी रहे डॉक्टर नारायण व्यास।
2: यदि सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाए उज्जैन क्षेत्र में जो बसावट है पाषाण युग से प्रारंभ हो जाती है। उज्जैन के पास जो आगर नाम का स्थान है वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। डॉक्टर वाकणकर ने वहाँ सर्वेक्षण किया था तो वे आदि मानव के पाषाण के उपकरण मिले थे जिसे हम गोलाश्म भी कहते हैं।
0: उज्जैन के निकट ही कायथा नाम का एक ग्राम है। इस स्थान पर किए गए उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर डॉक्टर वाकणकर का मानना था कि मालवा के इस क्षेत्र में विकसित सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से भी प्राचीन थी।
2: उज्जैन क्षेत्र में ताम्रास्म युग में भी काफी विकास रहा। यहाँ पर उज्जैन के पास जो कायथा है, कायथा में कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर निशान है, तो डॉक्टर वाकणकर ने एक्सकवेशन किया था तो उनका ऐसा मानना है कि ये प्री हड़प्पन से है। प्री हड़प्पा ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उससे पहले की कुछ सभ्यता है। वहां जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसमें जो कुछ ऐसे निशान मिले हैं वो कायथा के बर्तनों में मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि कायथा गांव काफी प्राचीन था, तो यहां पर कई सभ्यताओं का संगम हुआ है।
0: विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान में संस्कृत विषय के निदेशक डॉक्टर बाल कृष्ण शर्मा।
3: हमारे देश में दो बहुत बड़े उपजीव्य महाकाव्य माने गए हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। इन दो महाकाव्यों से आगे आने वाले कवियों ने प्रेरणा प्राप्त की है, कथानक प्राप्त किए हैं और उन्हें विस्तार दिया है। तो वाल्मीकि रामायण में तो उज्जैनी का संदर्भ है ही, महाभारत में भी उज्जैनी का संदर्भ महत्वपूर्ण है। महाभारत में यहाँ के दो राजाओं का वर्णन है, वे हैं आवंत्यऊ महीपालऊ विंदानुविंदऊ। विंद और अनुविंद नाम के दो यहाँ के राजा थे, और पौराणिक संदर्भ भी इसके साथ जुड़ जाता है कि इनकी जो बहन थी मित्र वृंदा उसके साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और वे श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक थीं।
0: अवंतिका पुरातन काल से ही कथाओं का विषय रही है। इतिहास की भारतीय अवधारणा के अनुरूप ही इन कथाओं में समय से अधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। उज्जैनी का विशद वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। इसके अधिकतर अध्याय अवंती और महाकालेश्वर के वर्णन से परिपूर्ण हैं।
3: स्कंद पुराण के अवंती खंड का आरंभ जिस मंगलाचरण से होता है वह भी भगवान महाकालेश्वर की स्तुति ही है। सृष्टारोपी प्रजानाम प्रबल भव भयात यम नमस्यन्ति देवाः।
4: सृष्टा

0: बिभ्राण सोमलेखा महिमलययुतं व्यक्तलिंगं कपालम्।
1: प्राचीन काल से ही श्रावण मास के सोमवारों तथा विभिन्न धार्मिक अवसरों पर महाकाल की शाही सवारी निकलती थी। इसे राजाधिराज का नगर भ्रमण कहा जाता था। इसे देखने अपार जन समूह एकत्रित होता था। महाकाल की ये यात्रा अभी भी निकलती है। स्कंद पुराण में महाकाल की इस यात्रा का विस्तृत विवरण मिलता है।

अतीत में महाकाल मंदिर के पीछे सघन वन हुआ करता था। मान्यता है कि ये वन शिव और पार्वती को अत्यंत प्रिय था। महाकाल की गाथाओं में महाकाल वन की चर्चा प्रायः मिल जाती है। इसे अवंती खंड में मुक्ति क्षेत्र कहा गया है।

महाकाल मंदिर परिसर में प्रसिद्ध तीर्थ है रुद्र सरोवर। स्कंद पुराण के अनुसार इसमें स्नान करने से कोटि तीर्थों का फल मिलता है।

भारतीय संस्कृति में सरोवरों, नदियों, वनों और संपूर्ण प्रकृति का कितना महत्व है, यह हमारे तीज त्योहारों और हमारी परंपराओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। ये भारत ही है जहां इतिहास में हमें न सिर्फ समय का लेखा जोखा बल्कि जीवन को जीने की कला, अध्यात्म का मार्ग और मोक्ष की ओर जाने वाली राह भी दिखाई देती है।

0: वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक डॉक्टर रामकुमार अहिरवार, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान की।
1: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे सिंहस्थ संवाद अमृतगढ़ परसे की 8वीं कड़ी।

नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा और दिल के सबसे करीब फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मैं हूं आपकी उद्घोषिका हिमानी। श्रोताओं, अगस्त का ये महीना अपने साथ एक अलग ही उमंग, ताजगी और खुशियां लेकर आता है। सावन की रिमझिम फुहारों से शुरू हुआ ये सफर हरियाली तीज, नाग पंचमी और 15 अगस्त की देशभक्ति के रंगों से सजता हुआ आगे बढ़ता है। और अब तो रक्षाबंधन, ओणम, जन्माष्टमी और फिर विघ्नहर्ता श्री गणेश का आगमन, यानी खुशियों की मिठास की और अपनों के साथ की एक लंबी लड़ी शुरू हो चुकी है। त्यौहार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, त्यौहार तो बहाना होते हैं अपनों को गले लगाने का, पुरानी कड़वाहटों को भूलकर मिठास खोलने का और बचपन की उन मासूम यादों की गलियों में एक बार फिर लौट जाने का। बस इसलिए आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही खास और सीधा आपके दिल से जुड़ा हुआ है, त्योहारों की मिठास और हमारी बचपन की यादें। आज हम आपसे जानेंगे कि बचपन में त्योहारों पर आपकी सबसे पसंदीदा याद कौन सी है, किस त्योहार का आपको बेसब्री से इंतजार रहता था और त्योहार आते ही घर का माहौल कैसा बदल जाता था। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और मिलाइए हमारा स्टूडियो नंबर 07344054191 पर। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आपके कॉल का इंतजार है। तब तक आइए इस खूबसूरत माहौल की शुरुआत करते हैं आज के इस पहले गाने के साथ।

0: वाह क्या बात है, कितने प्यारे सुर थे। और चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम बताइए।
1: मुरादाबाद यूपी से रणबीर सिंह जेठालाल।
0: रणबीर सिंह जी, आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है मैम, श्रोताओं के बीच में मैम, इतने श्रोता जुड़े हुए हैं आपसे।
0: जी सर, बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है हमारे पसंदीदा त्योहार और उनसे जुड़ी हमारी बचपन की यादें, तो आप आपकी कौन सी सबसे खूबसूरत याद हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
1: मैडम, त्योहार तो सभी बढ़िया हैं, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, ये सब हमारे अपने त्योहार हैं।
0: जी
1: अब जी, अब 15 अगस्त की खुशियाँ कितनी होती हैं मैम, हर किसी के दिल में एक जज्बा होता है अपने देश के लिए कुछ करने का।
0: जी सर,
1: जब हम देशभक्ति गाने सुनते हैं ना मैम, तो एक सब हिंदुस्तानी के अंदर सबके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें।
0: कितने सुंदर विचार हैं आपके, मतलब आपका पसंदीदा त्योहार है स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय त्योहार।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमें देश की आजादी मिली, आज हम जो जी रहे हैं तो किस उससे जी रहे हैं मैम, जिन्होंने बलिदान दिए, कुर्बानी दी, इतनी अपनी अपनी
0: बड़े ही सुंदर विचार है
1: मैम, आज हम उन्हीं के उससे तो
0: जी
1: सांस ले रहे हैं। सर
0: सर, आप कोई और याद हमारे साथ जो शेयर करना चाहेंगे?
1: जी, रक्षाबंधन की यादें हैं मैम, पहले आपने देखा होगा वो जो राखी आती थी ना।
0: जी जी,
1: वो थोड़ी बड़ी सी आती थी।
0: हाँ, वो बड़ी सी राखी आती थी पहले।
1: हाँ, वो गुलाब के फूल की तरह मैम आती थी, उसमें कुछ बर्फी के कुछ वैसे वैसे बने हुए होते थे।
0: जी जी,
1: तो हम पतंग उड़ाते थे, पतंग जब अब उड़ाते हैं तो जब उड़ाते थे मैम, तो वो उनमें लग जाती थी डोर हमारी, तो हमें बड़ा वो लगता था, बताओ डोर हमारी लग गई। हमारे मुरादाबाद में ना 15 अगस्त की पतंग होती है मैम, वो इसको रक्षाबंधन की पतंग होती है हमारे यहाँ मुरादाबाद यूपी में। तो
0: रक्षाबंधन पर आपके यहाँ पतंगें उड़ती हैं?
1: जी जी, हमारे पतंगें उड़ती हैं रक्षाबंधन।
0: ये तो बड़ी ही विचित्र बात बताई आपने।
1: नहीं मैम, हमारे यहाँ तो हम तो सुबह उठ जाते हैं मैम अंधेरे में।
0: वाह क्या बात है, हमारे श्रोताओं से जुड़कर हमें पता चलता है कि हमारे आसपास हमारे अलग अलग जिलों में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं।
1: बिल्कुल मैम, और आज भी पतंग उड़ती है मैम हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे, सुबह उड़ जाते हैं हम सब।
0: बढ़िया, बहुत
1: मम्मी हमारी, मम्मी पापा हमारे नीचे दबा देते हैं, अरे आजा आजा राखी बंधवा ले, अब हम कहते हैं अरे बंधवा लेंगे पहले पतंग तो उड़ा लें।
0: वैसे आम तौर पर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है।
1: जी ना, हमारे यहाँ माफ जब नहीं उड़ती मैम, हमारे तो 15 हमने जब से उस समय आला ना मैम, तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे उड़ती हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत बात है, धन्यवाद आपका।

0: आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए।
1: जी गाना सुनवा दिए मैं हम बढ़िया सा।
0: जी बिल्कुल, अब हमको हम सुनवाते हैं बढ़िया सा गाना।
1: नमस्ते मैम, और सभी श्रोताओं को मित्रता दिवस, श्रोता मित्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, धन्यवाद।
1: नमस्ते मैम।

0: क्या बात है, यादों का कारवां शुरू हो चुका है। आप भी मिलाइए 0734405419 पर। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी, बहुत बहुत।
0: अपना नाम बताइए सर।
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ।
0: अविनाश जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। तो अविनाश जी, आपको आज के हमारे टॉपिक के बारे में पता है कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं?
1: जी जी, बिल्कुल। हमारे बचपन से जुड़ी हुई जो त्योहार हम मनाते थे, उसी त्योहार के बारे में अपनी यादें
0: जी जी। तो बताइए, हमसे साझा कीजिए आपकी खूबसूरत यादें।
1: जी जी, तो बचपन में देखिए, हम सबके लिए जो जितने भी त्यौहार आते हैं, हम सबके लिए सभी त्यौहार एक से बढ़ के एक होते थे। हम सभी उस त्यौहार में मतलब कि सबसे मिलते जुलते थे, अच्छा लगता था। और जब बचपन में थे तो हम सबसे घर में आते थे, तो हम सोचते थे कि वो जब आएंगे तो उपहार जरूर लेके आएंगे। मतलब उस हिसाब से हम सबके लिए वो त्यौहार

0: और भी ज्यादा
1: हाँ
0: बन जाता था हम सब के लिए।
1: जी, गिफ्ट्स के लिए हम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल। और सबसे बड़े देखिए त्रिपुरा में सबसे बड़े त्योहार हम दुर्गा पूजा जो और क्या जो अभी जो आने वाले हैं अक्टूबर महीने में जो

0: सुरीले गानों और आपकी बातों के साथ समय का पता ही नहीं चल रहा। अगले श्रोता हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी।
0: राकेश जी, आपको जैसा कि पता है हमारा आज का टॉपिक है त्योहारों की यादों से जुड़ा, तो आप हमें बताइए आपका सबसे पसंदीदा त्योहार कौन सा है और उससे जुड़ी आपकी सबसे खूबसूरत याद।
1: जी जी जी, तो बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है। सबसे बड़ा त्योहार जो है होता है, और ये त्योहार होता है हमारा मेला।
0: मेला
1: मेला इसलिए पसंद है कि जब हम मेले में जाते हैं तो हमें अन्य दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। क्योंकि ऐसे तो हम मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जो जो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कभी हमने उनको देखा नहीं, किसी और सब जो है मेले में जब जाते हैं ऐसे, तो घर में तो सभी आते हैं फंक्शन त्योहार में, लेकिन जो बाहर जब गांव में मिला था तो सभी मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं, जो दूर दराज के रिश्तेदार सभी जो हैं, तो उनसे मुलाकात हो जाती, तो बहुत ये अच्छा लगता है। क्या बोलते, मेले में जाना और उनसे मुलाकात करना है। और बचपन की बात है तो मेले में बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि जब हम जाते थे तो फिर खाना खोना जैसे जो भी खाते थे, फिर खेलते थे और झूला भी झूलते थे कई लोग जो हैं, तो बहुत ये अच्छा लगता।
0: जी,
1: तो आज ये टॉपिक बहुत अच्छा चुना आपने
0: जी। एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, त्योहारों पर कपड़े या तोहफे खरीदने की खुशी अलग ही होती थी बचपन में, किसी त्योहार पर मिला कोई ऐसा तोहफा जो आज भी आपके दिल के सबसे करीब हो।
1: जी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब जैसे कि शादी ब्याह होती थी किसी रिश्तेदार की, तो पहले हम एक हफ्ते पहले शॉपिंग करते थे, तो हम बड़े खुश होते थे जब कपड़े आते थे कि देखो आज हमने ये पहन के जाना है और ये चीज पहननी है, तो अलग खुश होती थी कि नए नए कपड़े जो है, नए नए कपड़े पहनते थे, तो फिर अलग खुश होती थी। और कई बार हम अपने माता पिता से रुट जाते कि मेरे लिए नहीं ला, मैं नहीं जाऊंगा, और बाकी सबके लिए लाया। कई बार माता पिता

0: वो तकिया अभी तुम्हारे पास में चला है तो अब नहीं मुझे नहीं आती है कि तब हम त्योहारों में जाएंगे।
1: जी बिल्कुल
0: जी जी तो और एक एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज की भी हार्दिक शुभकामना, क्योंकि आज जो है पूरे आज भी एक त्योहार है, 3 दिन से चल रहा है रेडियो श्रोता सम्मेलन, उसकी भी हार्दिक शुभकामना। उसमें जो है सभी श्रोता हमें मिल पाते हैं, जैसे कि आज हमारे भी श्रोता है, पूछे हैं दोस्त हैं, जैसे कि नाना खेड़ा बस स्टैंड लोकेंद्र वर्मा जी हैं, हमारे पुराने रेडियो श्रोता मित्र हैं, और हम रेडियो श्रोता मित्र जो है अगर ऐसा त्यौहार हो जाए तो हम आपस में भी मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी जी बिल्कुल,
0: जी जी जी जी
1: बहुत
0: जी
1: बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए।
0: जी जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं अब सुनते हैं अगला गाना।

0: बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए।
1: जी जी धन्यवाद।
0: श्रोताओं अब सुनते हैं अगला गाना।

0: श्रोताओं, अगर आप भी अपनी यादें शेयर करना चाहते हैं तो डायल करें 0734405411। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हिमानी जी, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बताइए।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा विषय है हमारे मनपसंद त्योहार और उनसे जुड़ी हमारी बचपन की यादें। तो प्लीज आपकी कोई सबसे पसंदीदा खूबसूरत याद हमारे साथ साझा कीजिए।
1: सबसे मुझे बताऊं, सबसे अच्छा त्योहार लगता है दीपावली का। उसमें क्या होता है कि उसमें मिठाइयाँ भी मिलती है खाने को, पटाखे भी मिलते हैं जलाने को, और नए कपड़े तो अक्सर हम हर त्योहार पे लाते हैं, लेकिन मिठाइयाँ और पटाखे के साथ में जब 3-4 दिन की छुट्टियाँ भी रहती है इस त्योहार में, और इतना उत्साह रहता है दीपावली के समय पे कि आपको बताऊं, उसमें बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, अपने को भी काम में मतलब थोड़ा टाइम निकल के निकाल लेते हैं, उस समय फ्री समय होता है, तो मुझे सबसे अच्छा दीपावली का त्योहार लगता है।
0: और दीपावली के त्योहार में सबसे बड़ी एक चीज है कि हम 1 महीने पहले से हमारे घरों की साफ सफाई शुरू कर देते हैं।
1: जी, उससे तो मतलब 10 दिन पहले ये सारी तैयारियां हो जाती है, और कुछ नए वाहन या कुछ ऐसे कुछ खरीदते भी है कुछ लोग, मतलब
0: धनतेरस के अवसर पर हम हमारे घर में नए नए वाहन और नई चीजें लाते हैं। जी
1: हाँ जी, तो काफी मतलब अच्छा रहता दीपावली का त्योहार मेरे लिए।
0: जी, मेरा पसंदीदा त्योहार ही दीपावली का त्योहार ही है।
1: जी, तो बहुत ही अच्छा है हिमानी जी, मुझे आपसे बात करके लगा है। और एक बात और है कि मैं आकाशवाणी मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ, और न्यूज ऑन एआईआर पर कार्यक्रम आने की वजह से हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं और नए नए दोस्त भी बनते हैं।
0: जी जी, न्यूज ऑन एआईआर पर आप बिल्कुल सुन सकते हैं आकाशवाणी उज्जैन।
1: बिल्कुल, और एक बात है, आपको रश्मि बजाज जी मिले तो उन्हें मेरा नमस्ते कहिएगा।
0: जी बिल्कुल, रश्मि मैम को मैं आपका नमस्ते कहूंगी।
1: बोलेंगे प्रेम सिंह भजन गायक ने बोला तो वो बिल्कुल पहचान जाएंगे मुझे।
0: जी
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए। अब सुनते हैं अगला गाना।

0: खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और आज हमारे श्रोता दिल खोल कर खुशियाँ बांट रहे हैं। हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी उज्जैन, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम बताइए।
1: गोविंद जलोदिया, खातेगांव।
0: गोविंद जी, आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: गोविंद जी। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं त्योहारों के बारे में,
1: त्योहारों की, हाँ, तो त्योहारों में तो 15 अगस्त सबसे बेस्ट राष्ट्रीय त्योहार है।
0: जी बिल्कुल, देशभक्ति का त्योहार।
1: हाँ, ये तो सबसे पहले नंबर है और इसके बाद आती है दिवाली।
0: जी सर,
1: दिवाली से बहुत फायदे रहते हैं, घर में साफ सफाई वगैरह, ये वो खाने पीने की मिठाई
0: जी,
1: और दिवाली से मतलब शुद्धिकरण भी हो जाता है, 4 महीने जो वैसे ही पड़े रहते हैं
0: जी।
1: हाँ, ये त्योहार।

0: बाकी तो बहुत फिर त्योहार है, होली है, ये है वो है, अभी तुम्हारी राखी आने वाली है।
1: जी, आप आपकी कोई बचपन की याद हमसे साझा करना चाहेंगे?
0: बचपन की तो कोई याद या इतनी तो याद नहीं है मेरे को कुछ भी बचपन की तो, पर बचपन में भी हम जो है दिवाली मनाते थे, फुलझड़ी का और फटाका का वो डचकुंडी वाला काम चलता था, मसाले वाला,
1: जी
0: मतलब जो उन डचकुंडी आती थी, मसाला दे देते थोड़ा थोड़ा घर वाले में हमको, और के बस 2-3 दिन पहले से ही, 2-3 दिन बाद तक, वैसे तो वो 11 तक चलती है,
1: जी
0: ऐसा प्रोग्राम रहता था। अब आधुनिक टाइप में आजकल तो बम फटाका ये बहुत तरह के वो हो गए।
1: जी आकाशवाणी उज्जैन में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है।

0: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। हेलो।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, दुनेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन में।
1: शुक्रिया
0: योगेश जी। जैसे आपको पता है, आज का हमारा टॉपिक है आपके मनपसंद त्योहार और उससे जुड़ी आपकी यादें।
1: जी, सबसे अच्छा त्योहार में तो दीपावली ही लगता है
0: जी।
1: और यादों के बारे में कहे तो उजालों का त्योहार है, एक खुशियों का त्योहार है। और हम लोग जैसे ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं तो उजाले में पूरा गांव जगमगा उठता है
0: जी। दियों की रोशनी से बहुत ही खूबसूरत पहल बन जाता है दिवाली पर।
1: हाँ जी, हाँ जी। और आज हम लोग आए हैं, ये अपना भिलाई में श्रोता सम्मेलन है
0: जी।
1: तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा त्योहार का ही माहौल बना हुआ है।
0: जी बिल्कुल,
1: लगभग 400-500 श्रोता हमारे यहाँ शामिल हैं।
0: जी, आज आकाशवाणी के श्रोताओं का भी एक बहुत बड़ा त्योहार है। हम कई
1: हाँ
0: श्रोता
1: जी
0: जी
1: जी और हर राज्य से लगभग बहुत सारे मित्र पहुँचे हैं
0: जी। तो योगेश जी, आपका आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला गाना।

प्रिय श्रोताओं, आज रेडियो श्रोता दिवस के अवसर पर हम अपने उन सभी श्रोताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो वर्षों से रेडियो परिवार का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। रेडियो केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, विचारों और संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु है। इस सेतु को मजबूत बनाने में आप सभी श्रोताओं का अमूल्य योगदान रहा है। आपके पत्र, फोन कॉल, संदेश, सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा देती हैं। समय के साथ संचार के अनेक आधुनिक माध्यम आए, लेकिन रेडियो की आत्मीयता और विश्वसनीयता आज भी लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखती है। घर, परिवार, खेत, खलिहान, यात्राओं और दैनिक जीवन के हर पड़ाव पर रेडियो ने आपका साथ निभाया है और आपने भी हमें अपना स्नेह प्रदान किया है। रेडियो श्रोता दिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें और उपयोगी, सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे जुड़े रहें। एक बार फिर आपके अटूट विश्वास, स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कुछ बातें, कुछ कार्यक्रम, कुछ गीत वाले कार्यक्रम से विदा लेने का। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी और आप सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संगीत राजू सिंह का, एल्बम तुम आए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगमोहन सुरसागर की आवाज में ये गीत एल्बम द बेस्ट ऑफ जगमोहन।

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी की आवाज में तेरा चेहरा। इस एल्बम का गाना समीर के बोल, संगीत है अदनान सामी का।

0: करेक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार शेवन बिजनोरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: रंग तरंग।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। शायर हैं अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोश।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना,

0: ही रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना समीर के बोल संजीव दर्शन का संगीत एल्बम तलाश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत पोहनकर की आवाज में ये गीत। एल्बम का नाम पिया बावरी, गीत और संगीत अजित अभिजीत पोहनकर का।

0: भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला गीत है अनोखी।

यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिल का हीरा। इस फिल्म का गाना आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अमित कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, इंदिवर की बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीर जारा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश, इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के संगीत है कनू रॉय का।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, बोल गुलजार के संगीत कनू रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: हम पंछी एक डाल के, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना, संगीत एन दत्ता का।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है जो हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहना है आज तुमसे कुछ कहना है, हाँ मुझे कुछ कहना है। तुम्हारी झुकी झुकी नजर कहती है तुम मेरे थे और मेरे ही हो। आज तक जो कहा तुमने कहा, फिर दिल ने भी तो दिल से जाने क्या कहा। मैंने तो फूलों से कहा था और चंद्रमा से कहा था कि जाओ उनसे कह दो, पर जाने क्या मैंने कही और जाने क्या उसने सुनी। बात बस कुछ कहने की नहीं है, बात यह है कि हम क्या कहते हैं। हमारे कहने की कुछ सीमाएं हैं, सोच समझ कर कहें। कहे हुए शब्द वापस नहीं आते, उतना ही कहें जिससे आपसी सद्भावना बनी रहे। मां ने भी यही कहा था, कभी दिल किसी का न तोड़ो। अब ये न कहना कि हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। ये आज की इबारत है या टेक्स्ट है जो हमने विविध भारती का जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट किया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा है और बहुत सारी बातें भी लिख भेजी है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो दिल के किसी कोने में बहुत देर से चुपचाप बैठी होती है, किसी से कह भी नहीं पाते। कभी लगता है कह दूं तो बोझ हल्का हो जाएगा, कभी डर लगता है कि सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। पर सच ये है कि जो बातें हम नहीं कहते वही हमें सबसे ज्यादा थकाती है। कितना कहना है, किससे कहना है, मन इसी उथल पुथल में रहता है। लेकिन कहना जरूरी हो तो उतना ही कहें जितने से दिल हल्का हो जाए। कही गई बातों के शब्दों की गिनती मायने नहीं रखती, मायने रखती है उन शब्दों की सच्चाई और गहराई जो सुनने वाले पर असर कर जाए। इसलिए आज इतना ही कहूंगा कि जो महसूस होता है उसे दबाइए मत, जो दिल से अपने लगे उन अपनों को बताइए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा रोइए और दिल की सुनिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है। कहने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। एक हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि शब्दों का खेल भी अजीब है, कभी आंखें सब कह देती हैं तो कभी जुबां भी खामोश रहती है। लेकिन बात सिर्फ कहने की नहीं, मर्यादा की है। सोच समझ कर बोले गए शब्द दिलों को जोड़ते हैं, जबकि बिना सोचे समझे कही गई बात बरसों के रिश्ते तोड़ सकती है। बड़ों ने हमेशा यही सिखाया है कि वाणी में मिठास रखो और किसी का दिल मत दुखाओ। इसलिए उतना ही कहें जिससे आपसी प्यार बना रहे। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब गाने सुनने की ओर हम रुख करते हैं। कार्यक्रम का जो पहला गाना है ये पड़ोसन फिल्म का गाना है। किशोर कुमार की आवाज से राजेंद्र कृष्ण के बोल है। सुनील दत्त सायरा बानू पर फिल्माया गया है, साथ में किशोर कुमार भी इसमें दिखाई देते हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। कुछ हमारे आज के जो सवाल हैं वो हम आपसे इस गाने के बाद पूछेंगे।

0: इस गाने में कहने का जो अंदाज है वो आपने देखा ही होगा, और बड़ा लुभावना अंदाज है कि एक व्यक्ति जो गीत अच्छे से गा नहीं सकता लेकिन उसका दोस्त पीछे से गाता है, और पहला जो दोस्त है वो सिर्फ होठ हिलाता है और इस तरह से बात बन जाती है कहने की। आरडी बर्मन का ये बड़ा ही प्यारा सा संगीत आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिए। एक हमारी साथी लिख रही कि पहले हमारी दादी माँ कहती थी कि तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम वह लिखकर भगवान जी के सामने रख दो चिट्ठी में, भगवान जी तुम्हारे मन की सुन लेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हम किसी से नहीं कह पाते हैं और मन बड़ा भारी रहता है, तो ऐसा करने से मन भी हल्का हो जाता है और एक मन से सोच भी निकल जाती है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि कहना यानी शब्दों का सफर, दिल की धड़कन की रवानी, कभी कभी मौज मस्ती प्यार की बोली मस्तानी, तो कभी खामोशी से बोली आंखों की जुबानी, मन की फुसफुसाहट की निशानी, तो कभी बुलंद आवाज में की गई देशभक्ति की वो पुकार रूहानी, मुलायम लफ्जों में सांत्वना देती सहानुभूति की निशानी, तो कभी कभी ओजस्वी विचार जो समाज को दे रोशनी, इस तरह कहते कहते बन जाती है जीवन कहानी बड़ी ही सुहानी। बहुत धन्यवाद आपका इतनी प्यारी बातों के लिए। और जो कुछ आज के हमारे सवाल है कहने पर से, तो पहली बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत अच्छी बातें कही हो और उसने उन बातों को माना भी हो और उन बातों का सामने वाले पर इतना असर हुआ कि उसकी दुनिया ही बदल गई और बाद में उसने आपसे आकर के धन्यवाद कहा कि आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे कही थी और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहार आई। अगर ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉबी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाज़ें हैं, एक तो लता मंगेशकर की आवाज़ है और दूसरी आवाज़ किसकी है यह आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कह...

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी आवाज़ है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज़ है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज इतना मृदुल, इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए, कहते ही जाए और हम अपलग से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर हो जाए और संबंधों पर भी कोई आँच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और ख्वाब इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है, यही समझ गए तो ठीक वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही है कि कहना तो सबको होता है पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है पर ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जिंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं, इसलिए जहां मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए, क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है, हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया, ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं, ये गाना है मुकेश और आशा भोंसले की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम, जी हाँ कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं, पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें कह देती है, खामोशी समझ लेती है, और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना जरूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना। हेमलता की आवाज है, अनजान के बोल, रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है यह आपको

0: सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी या आपके आसपास या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जिनको बहुत कहने की आदत है पर सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं? और जब ऐसा होता है तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है कि सामने वाला बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रही हैं तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज तक मुझे याद है। पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त है जिन हालातों से वो गुजर रही है उन्हें मैं ये बात कहती हूँ या सलाह देती हूँ। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज्यादा असरदार और गरिमामय होती है। बोलने की आज़ादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना जरूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है या आप बताइए।
1: रो

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ 3 शब्द समाए हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुंह से निकले लफ्ज फिर वापस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मिली फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर की आवाज है, एस डी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते, बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलने के आदि होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आप

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात ना हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात जरूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना प्यासा फिल्म का, ये गाना गीता दत्त की आवाज में।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको जरूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए, आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत जिसको हमने लिया है आपके दीवाने से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, राजेश रोशन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म कसमें वादे से। एक बार आवाज़ें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आयशा भोसले की हैं। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: कस्मे वादे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने गए। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में किसानों को रबी सीजन के लिए खाद उपलब्ध कराने और कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टिक पंजीयन, पैक सदस्यता और अग्रिम खाद उठाव अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई और सुधारी जाएगी, पैक्स की सदस्यता बढ़ाई जाएगी, किसानों को पहले से खाद लेने की सुविधा दी जाएगी, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाने और 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी की जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार खाद बीज लेने, फसल बीमा, कृषि यंत्रों पर अनुदान और ई मंडी में फसल बेचने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। किसानों से अभियान का लाभ उठाने की अपील की गई है। सीहोर में प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर बनाए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात पचामा गांव स्थित एक डेयरी पर कार्रवाई कर करीब 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त कर सील किया। जांच में पनीर के पैकेट पर कंपनी और उत्पाद का नाम नहीं होने सहित लेबलिंग में कई अनियमितताएं मिली हैं। मौके से बड़ी मात्रा में नमक और शक्कर भी बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 12 अगस्त से एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध है। टीम ने पनीर के नमूने लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सती गेट से गोपाल मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंठाल चौराहा और सती माता मंदिर द्वार के प्रस्तावित विकास कार्यों की डिजाइन भी देखी। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री चिंताहरण गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
1: और उज्जैन में हमारे अपने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनके प्रबंधन की दृष्टि से मार्ग चौड़ीकरण भी देखने जा रहा हूँ। साथ साथ सिंहस्थ 2028 में जब कुंभ मेले का सिंहस्थ का आयोजन होगा, ऐसे में 30 से 40 करोड़ लोग जो आने वाले हैं, उनके प्रबंधन के लिए जो जिस प्रकार से यहाँ तैयारियाँ की जा रही है, मैं अपनी तरफ से जनता से भी इस बात के लिए जनता का आभार मानना चाहूँगा, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने बड़े बड़े चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित मार्गों पर अपने स्वयं के निवास, व्यवसाय के संस्थान इत्यादि स्थान से अतिक्रमण हटाते हुए सभी धर्मों के लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उनका आभार भी मानता हूँ।
0: कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव पद पर पुनः निर्वाचित होने पर मध्य प्रदेश के अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रज्ञा बघेल 18 अगस्त को नई दिल्ली में हुए चुनाव में सचिव पद पर निर्वाचित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पद पर दोबारा निर्वाचित होने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला अधिवक्ता के रूप में उन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रज्ञा बघेल के सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज धार जिले के पीथमपुर के सागौर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन और निरीक्षण किया। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। दतिया, भिंड, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, मैहर और सतना में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर पड़ सकता है। भारी बारिश के कारण सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक शहडोल में आयोजित की गई। बैठक में जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, क्षेत्रफल सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शहडोल में बीते 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है, कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का असर आम

जनजीवन पर पड़ा है, नदी नाले उफान पर हैं। आगरमालवा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल हुई जिला पोषण समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जबलपुर में 3 दिवसीय पारंपरिक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित

0: बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग

0: विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद सुरक्षा और विकास

0: विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये जिंगारो फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ प्रेम धवन के बोल। संगीत है SN त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।
3: जब तक

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
1: नदी नारे

पे करो उस पारे न जाओ शाम को।

0: संसवतिया हाय संसवतिया न लाओ शाम पैया करूं संसवतिया न लाओ
1: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म का नाम शराबी

आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
2: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
2: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर।

0: भाषाएं और बोलियां, जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
1: हाँ।
0: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: उनके और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
0: बिल्कुल।
1: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती, वहां इशारों में भी बातें होती हैं, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी।
0: जी।
1: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
0: वो है गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार है और बहुत ही संघर्षशील महिला है। तो उनके बारे में
1: और चित्रकार की बात आती है ना, तो चित्रकारी में भी बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
0: बिल्कुल।
1: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के, तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
0: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
1: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है, तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए, इस बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप या किसी भी समय कुछ भी खाते हैं। और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, ऐसा लगने लगता है।
0: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है। चटोरापन कह सकते हैं।
1: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
0: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
1: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है, इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
0: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, सद्भावना का मतलब क्या होता है? सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
1: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो, और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
0: बिल्कुल। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं। यही विविधता हमारी ताकत भी है, और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
1: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे,
0: बिल्कुल शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
1: और ये खाली एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
0: बिल्कुल। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
1: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़ें, प्रगति करें, गीत
0: सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसका खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
1: हाँ, वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, हाँ, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हुए उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गाँव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने की नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी। अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं और होश संभालते बड़े होते, माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी, और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी

0: पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी।
1: क्या
0: उन्होंने
1: बात है।
0: पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गईं और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
1: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
0: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
1: और जैसे कि हमने कहा ना, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर। तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए। उन्होंने जिद की, लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक लसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
0: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था। सब परेशान थे, गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
1: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र बना दिया था। और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की। और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
0: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ, शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
1: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं, तो सुन ले।
0: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहां कहां तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पर ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शाल और कुशन कवर और और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुने एक गाना,
1: एक गीत।

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवंत समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब नहीं हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है। जो
0: कहते तो है कि कोस कोस पे बदले तीन कोस पे वाणी,
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं, और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
0: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती हैं जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखी, कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी।
0: हाँ,
1: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कार्बी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
0: कहते हैं नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
1: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो समय संकट में है, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, और कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि नहीं है।

0: हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार और में बोलने जा रहा। इसी तरह निहालीस, दारमा, गांगटे, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
0: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं की जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है, कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
1: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है, जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं, जुड़ी हुई जो उनके लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी।
0: एक संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सीडेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं, हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ सकते हैं।
0: देखो, जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व है।
1: और साथ ही हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है। उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने, कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल, एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ है वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ है, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में महिलाएं या पुरुष उन लोकगीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद लेकिन यह नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, यह हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
0: नहीं है, और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए, फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
1: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है।
0: हाँ।
1: और पैसा

0: समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत, बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज़ आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा आप खा लें।
0: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
1: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सोचता नहीं सिर्फ खाने के सिवाय। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं,
0: हाँ
1: या बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।

0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव, भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयाँ खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे नुकसान तब हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल, और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें। और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं। बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: है?
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, ये सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बेहतर
1: कई
0: है।
1: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ने बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए जिसकी वो पहने उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं
1: बिल्कुल, एक
0: आपके।
1: हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म कपड़े से गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती हैं कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंजरी वर्मा, लेकर आई हूँ आपका हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सुरों की महफिल सजी है, फरमाइशों का है इंतजार। आपके पसंद के गीतों से सजाएंगे आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम। दिल की धड़कन बनकर हर नगमा आपके पास आएगा, कभी यादों की खुशबू, कभी जिंदगी के सफर की होंगी बातें। हर गीत के संग दिल से दिल की मुलाकात होगी। लीजिए बज उठी है फोन की घंटी, चलिए सुनते हैं कि आज कौन होगा पहला कॉलर। हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम नमस्कार, मैं राम गोपाल बोल रहा था भोपाल से।
0: नमस्कार राम गोपाल जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं, तो क्या हाल चाल है वहां के?
1: भोपाल के तो अभी बारिश हो रही, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, मतलब सामान्य से इस बार बहुत कम है
0: जी। और बताइए राम गोपाल जी कि आप क्या करते हैं?
1: अपने ये मकान वकान बनाने का, ऐसे ठेका वेका ये लेते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री का काम भी है, सभी कर लेते हैं, ठेका भी ले लेते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप घर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं यानी कि?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बड़ा अच्छा लगा कि आप ये मेहनत वाला काम करते हैं। तो इस काम के बीच बीच में आप विविध भारती रेडियो स्टेशन सुनते रहते हैं?
1: जी अभी भी साइट चलती है, तो मैं तो साथ में अपने होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
0: तो आपको किस तरीके गाने अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुहाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्त पर संगीत उस 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
0: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है यहाँ, भोजपुर मंदिर भी है, थोड़ा

0: पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए आज।
1: जी, और ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म राम जाने का टाइटल सॉन्ग, कहते हैं लोग मुझे राम जाने।
1: तो लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूं, कंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया, तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव एक बम्बई हसलन रोड पे है, हेवी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, मावा बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी रहती है।
0: क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय?
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन।

0: की फसल लगाते हैं हम।
1: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
0: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी बीघा कुंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
1: क्या बात है। और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं आप, कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
0: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे हैं, कुआ भी है
1: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
0: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
1: बहुत अच्छी बात है। और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
0: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
1: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि है?
0: जी जी।
1: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
1: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी।

0: विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
1: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
0: जी।
1: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
0: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
1: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
0: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डे गुड़िये के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी
1: क्या बात है, यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है, तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
1: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सबाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी, लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
1: बचपन की यादें जो है मैडम।

0: साझा हो जाती है और मजा आता है। उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
1: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
0: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
1: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है
0: जी।
1: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
0: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं
1: जी। और क्या शौक है आपके?
0: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी है, पहले से चला आ रहा लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
1: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
0: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
1: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
0: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
1: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
1: बताइए बिल्कुल।
0: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
1: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर, मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है, तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: जी, शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी। जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED टीवी वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी, बिल्कुल रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही की बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े, मेरा शौक है।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सभी हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा, ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो जी, आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो उसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है, ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह, ये सब फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में हम लोगों के क्षेत्र में। और धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है, वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: उसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना, ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो, या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं, अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कानी शॉल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैं।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा।
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी जो डिजाइन होगा
0: जी
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो कि आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
0: जी,
1: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो जीली डल में जो हाउस बोट होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
0: क्या बात है। और बताइए, श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
1: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
0: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
0: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
1: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
0: जी
1: अपना अपना।
0: बिल्कुल। तो बताइए, हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
1: जी फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है।
1: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
0: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी एड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश कंजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है उसमें ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है तिल्ली खाते हैं वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है उसका प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाए?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुशी हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती है, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही है?
1: मैम गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर राग, मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना सब, वो सीख रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के वे एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, नि सा ग म प म ग म ग म प नि प नि सा प नि सा नि ध प म प ग म ग रे सा नि सा। जनाना जना मोरी बाजे पंजनिया, नि सा ग म सा ग म प ग म प नि म प नि सा प नि।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी और आपके कार्यक्रम वो विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो हाँ। तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: ये निकलता है, एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा, और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारतीय कार्यक्रम हेलो फरमाइश, सखी सहेली, और वो आप सेतनामा 4 बजे आता है, त्रिवेणी, क्षेत्रीय लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए, अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो, और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है, 20 भुजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलते हैं कि खाने पीने की सब्जी वाली, वो तो जिला है अपना गुना। तो
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमेरा इतिहास की फिल्मा।
0: तो गोपाल जी, लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहा है, बिमोल बसुमतारी मैम।
0: बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध
0: जी,
1: भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
1: जी मैं तो, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी मैम हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम।
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं।
1: जी
0: तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए? कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम।
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी मैम हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था।
0: तो बाकायदा कोई कोर्स
1: अभी
0: किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी उधर दुकान एक था, वो दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा
0: जी,
1: इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं? दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं,
1: जी
0: सिलाई
1: मैम
0: कोई और करता है?
1: हम खुदे सिलाई भी करता है, खुदे कटिंग करता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी मैम मैं खुदे करता हूँ, मेरा छोटा
0: अच्छा,
1: मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही
0: जी,
1: करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छी बात है। और आसाम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
1: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामेका टेम्पल, वो भी
0: जी
1: ठीक है, और
0: जी
1: कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है।
0: बड़ा खूबसूरत सा हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें भी सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: जी मैम मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है,
0: अच्छा
1: जोरहाट है, ईटानगर है, और
0: जी,
1: लखनऊ है,
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
0: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: रब को क्या मंजूर है, रोना चाहे रोना पाए।
1: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022, फोन नंबर है 2867-0288 यानी 02228-670-288। इसका दूसरा नंबर है 4002466-2 यानी 02240024662। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुर लेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: हेलो फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो।

0: हूँ एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी दृष्टि। हम लेकर हाजिर हैं युवा सोच और युवा जोश से सजा कार्यक्रम युववाणी। आज युववाणी प्रस्तुत करता है रिद्धि चौरे और मान्या गढ़वाल।

0: नमस्कार। आकाशवाणी उज्जैन के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रिद्धि।
1: और मैं हूँ मान्या। आप सभी प्यारे श्रोताओं को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। उम्मीद है कि हमारी आवाज़ इस समय आपके घर, आपके कमरे, आपकी यात्रा या आपके काम के बीच आप तक पहुंच रही होगी।
0: कहते हैं ना मान्या, कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक पहुंचती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें सीधे दिल तक उतर जाती है। रेडियो भी ऐसी ही एक आवाज़ है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अपनेपन का एहसास ज़रूर कराती है। श्रोताओं, हमारा देश सिर्फ अपनी बड़ी इमारतों, शहरों और तकनीक से नहीं बनता, देश बनता है उन लोगों से जो अपने विचारों से बदलाव लाते हैं।
1: कोई विज्ञान के एक क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कोई कला में अपनी पहचान बनाता है, कोई शिक्षा के जरिए समाज में बदलाव लाता है, और कोई अपनी छोटी सी कोशिश से किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ले आता है।
0: इतिहास हमें ऐसे ही अनगिनत लोगों की कहानियां सुनाता है। कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम शायद किताबों में आते ही नहीं, लेकिन उनका योगदान उतना ही खूबसूरत होता है।
1: और श्रोताओं, आज के युववाणी कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही कहानियों का जिक्र होने वाला है, ऐसे ही विचारों के बारे में बात होने वाली है। और ये हमारा एक छोटा सा सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जहां हम बात करेंगे आज की दुनिया की, युवाओं की, हमारे भविष्य की, और उन छोटी छोटी चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाती हैं।
0: सही बात कही मान्या। कभी कभी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई लगती है। सुबह कब शाम हो जाती है, सोमवार कब शुक्रवार बन जाता है, और देखते ही देखते कैलेंडर का एक और पन्ना पलट जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा रिद्धि आपने। लेकिन इसी भागती हुई ज़िंदगी में श्रोताओं, अगर हम कुछ पल रुक कर सोच लें, एक चैन की सांस लें, कुछ नया सीख लें, किसी खूबसूरत विचार को अपने साथ ले जाएं, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खुल के बातचीत कर लें, तो शायद वही कुछ पल हमारे पूरे दिन को खास बना देता है।
0: सही कहा मान्या। तो श्रोताओं, आज की इस शाम को भी कुछ ऐसा ही बनाते हैं। कुछ बातचीत होगी, कुछ मुस्कुराहटें होंगी, कुछ यादें होंगी, और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिन्हें सुनकर शायद आप कहें, अरे इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
1: बिल्कुल। और हाँ, हमारी कोशिश रहेगी श्रोताओं कि ये सफर सिर्फ हमारी बातचीत ना हो, बल्कि ऐसा लगे जैसे कि हम और आप आमने सामने बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं।
0: सही कहा। तो जहां भी हैं, हमारे साथ बनी रहिए, अपनी शाम को थोड़ा सा समय हमें दीजिए,
1: क्योंकि रेडियो की दुनिया में दूरी मायने नहीं रखती श्रोताओं। आवाज जहां पहुंचती है वहीं एक रिश्ता बन जाता है।
0: तो चलिए मान्या, इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल रिद्धि, शुरू करते हैं श्रोताओं हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी उज्जैन से सीधे आपके रेडियो और न्यूज ऑन EIR ऐप पे, कुछ नई बातें, कुछ नए विचार और ढेर सारी अच्छी ऊर्जा के साथ।
0: तो श्रोताओं, आवाज का ये सफर शुरू हो चुका है।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना एक बहुत ही मनमोहक गीत फिल्म मिर्ज़ापुर से रूमी की आवाज़ में, गीतकार जिनवी दीवान, संगीतकार आनंद भास्कर।
1: हमारी वार्ता पर वापस लौटते हैं। वैसे मान्या, आज 20 अगस्त है। आज की तारीख से जुड़ी एक बड़ी खास बात मुझे याद आती है, वो है आज अक्षय ऊर्जा दिवस है।
0: अरे वाह रिद्धि, मुझे लगता है कि आज के दिन इस विषय पर बात करना बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊर्जा हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद हम अपने एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते।
1: सही कहा मान्या। ज़रा सोचिए श्रोताओं, सुबह उठते ही पंखा, कूलर, मोबाइल चार्ज करना, पानी गर्म करना, खाना बनाना, गाड़ी चलाना, हमारी ज़िंदगी का लगभग हर काम किसी न किसी रूप में ऊर्जा यानी एनर्जी पर निर्भर करता है।
0: और अब एक छोटा सा सवाल है श्रोताओं आपसे, सोचिए अगर अचानक एक दिन के लिए हमारे पास ना बिजली हो ना ईंधन हो, तो क्या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे ही चल पाएगी?
1: नहीं, हम तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। और यहीं से समझ आता है कि ऊर्जा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस ऊर्जा पर हम इतना निर्भर करते हैं, वो आती कहाँ से है?
0: और क्या हमारे पास ऊर्जा के ऐसे भी स्रोत हैं जो कभी खत्म ना हो, या कम से कम बार बार प्रकृति से मिलते रहे?
1: बिल्कुल, और यहीं पर आता है हमारा आज का विषय, अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऐसी ऊर्जा जिसके स्रोत यानी सोर्स प्रकृति में लगातार उपलब्ध होते रहते हैं और जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जैसे कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, हवा से मिलने वाली ऊर्जा, पानी से मिलने वाली ऊर्जा, और कुछ हद तक जैविक पदार्थों से भी मिलने वाली ऊर्जा।
1: यानी सूरज रोज उगता है, हवा चलती है, नदियों में पानी बहता है, प्रकृति हमें लगातार ऊर्जा के नए अवसर देती रहती है।
0: और इसी वजह से इन्हें अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा गया है श्रोताओं। लेकिन रिद्धि एक बात बताओगी, आज तुम यहाँ आकाशवाणी तक कैसे पहुंची?
1: मैं तो अपने वाहन से आई हूँ।
0: ओके, अच्छा, तो यानी तुम्हारा आना भी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है।
1: अरे हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। गाड़ी चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और ईंधन की बात आते ही हमारे सामने आता है पेट्रोलियम।
0: सही कहा, पेट्रोल, डीजल और कई दूसरे ईंधन हमारी रोजमर्रा के परिवहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन रिद्धि, क्या तुमने कभी सोचा है कि पेट्रोल आखिर आता कहाँ से है?
1: पेट्रोलियम धरती के अंदर से निकलता है, लेकिन यही तो बात है, पेट्रोलियम कोई ऐसा स्रोत नहीं है जो हर दिन फिर से बन जाए।
0: बिल्कुल, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं श्रोताओं। हम इन्हें बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति इन्हें उतनी तेजी से दोबारा बना नहीं सकती है।
1: यानी अगर हम आज पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह धरती के अंदर नया पेट्रोल तैयार मिल जाएगा।
0: बिल्कुल नहीं, और यही अक्षय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर है।
1: श्रोताओं, जरा अपने आसपास देखिए, सड़क पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं, बसें, कारें, मोटरसाइकिलें, ट्रक, इन सब के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है।
0: और सिर्फ वाहन ही नहीं श्रोताओं, उद्योग, बिजली उत्पादन और हमारी रोजमर्रा की कई गतिविधियां भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रही हैं।
1: सही कहा मान्या, लेकिन इनके अत्यधिक इस्तेमाल का असर सिर्फ हमारी जेब पर नहीं पड़ता, इसका असर हमारी हवा और हमारे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है।
0: और श्रोताओं, यही कारण है कि आज पूरी दुनिया ऐसे ऊर्जा स्रोत की ओर देख रही है जो प्रकृति के साथ ज्यादा बैलेंस बनाकर चले।
1: तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऊर्जा की ये कहानी अभी शुरू हुई है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।
0: तो चलिए श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये बेहद खूबसूरत गीत फिल्म मन मर्जिया से, जिसके गायक थे एमी विर्क, शाहिद मालविया, संगीतकार थे अमित त्रिवेदी और गीतकार थे शैली।
1: हाँ तो श्रोताओं और रिधि, अभी हम बात कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी कि अक्षय ऊर्जा आखिर होती क्या है। लेकिन अब मेरे मन में, आपके मन में और हमारी सभी श्रोताओं के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भारत इस क्षेत्र में कर क्या रहा है, क्योंकि सुनने में तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर कोई युवा इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो शुरुआत कहाँ से कर सकता है?
0: बिल्कुल मान्य। और श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब सिर्फ छत पर सोलर पैनल लगाना है तो बिल्कुल भी नहीं,

0: आज की हमारी बातचीत आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग
1: होने वाली है. एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि सोलर पैनल तो हम सब ने देखे हैं, लेकिन इनके पीछे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी, रिसर्च और पूरी इंडस्ट्री काम करती है, शायद हम में से बहुत लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है.
0: नहीं होता है. भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी, इन सभी क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है.
1: बिल्कुल, और भारत के लिए सोलर एनर्जी तो खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है. श्रोताओं, हमारे देश में साल के काफी हिस्से में धूप अच्छी मिलती है, यानी हमारे पास ऊपर से रोज एक बहुत बड़ा नेचुरल एनर्जी का सोर्स मौजूद है.
0: सही कहा मान्या. और मजेदार बात यह है कि हम गर्मियों में सूरज से परेशान हो जाते हैं
1: और वही सूरज आज हमें बिजली भी दे सकता है.
0: यही तो नेचर का कमाल है ना?
1: लेकिन श्रोताओं, सिर्फ सोलर एनर्जी ही नहीं, भारत में विंड एनर्जी पर भी काम हो रहा है. आपने बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स तो देखे ही होंगे, वो लंबे लंबे पंखे जो एकदम लैंड बेसिक प्लेटफॉर्म्स पर घूमते रहते हैं.
0: सही कहा मान्य. और जब वो घूमते हैं तो सिर्फ हवा नहीं घुमा रही होती उन्हें, बल्कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश हो रही होती है.
1: यानी हवा चली, टर्बाइन घूमी और एनर्जी बनने लगी. सुनने में बहुत सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके पीछे लेट मी टेल यू, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है.
0: ऐसा ही कहा मान्य. और यही वजह है कि अगर कोई स्टूडेंट साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट या रिसर्च में इंटरेस्ट रखता है तो रिन्यूएबल एनर्जी उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग फील हो सकती है.
1: बिल्कुल, और यही वजह है श्रोताओं कि ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है. इसमें आप सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना पड़ता आपको. बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा फील्ड है. इसमें इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, डेटा एनालिस्ट, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, पॉलिसी प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स, बहुत तरह के लोग काम करते हैं.
0: यानी अगर किसी को मशीन्स पसंद है तो उसके लिए रास्ता है, अगर किसी को साइंस और रिसर्च पसंद है तो उसके लिए भी रास्ता है,
1: अगर किसी को एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी ही में इंटरेस्ट है
0: तो उसके लिए भी
1: बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर किसी को बिजनेस पसंद है तो
0: वो रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है.
1: बिल्कुल. अच्छा, तो मतलब हमारे लिसनर्स में जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे लिए ये फील्ड ही नहीं है,
0: उन्हें हम कहेंगे एक बार फिर
1: सोच लीजिएगा. बिल्कुल, तो चलिए श्रोताओं, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन से पहले सुनते हैं एक और मधुर गीत.

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पाप का एक बहुत ही खूबसूरत गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, संगीतकार शाही, गीतकार अमजाद इस्लाम। गीत के बाद लौटते हैं। मान्य हमारी काफ़ी खास चर्चा चल रही थी, भारत में कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं जिनके बारे में युवाओं को पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE, जो देश में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े कई प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स पर काम करता है।
1: और अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझना होगा। आपको सोलर में इंटरेस्ट है, विंड में, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी में, एनर्जी स्टोरेज में, या फिर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में,
0: या फिर आपको टेक्नोलॉजी और डेटा पसंद है तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में डेटा एनालिसिस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर भी काम कर सकते हैं।
1: ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना रिधि?
0: हाँ,
1: क्योंकि अब रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनर्जी बनाने तक की बात नहीं रही है, टेक्नोलॉजी के साथ इसका कनेक्शन बहुत बढ़ चुका है।
0: बिल्कुल मान्या, आज एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एनर्जी जनरेट करना।
1: और इसी जगह आती है श्रोता स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सेंसर्स, डेटा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबका इस्तेमाल एनर्जी सिस्टम्स को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।
0: सोचिए, एक सोलर पावर प्लांट में हजारों पैनल्स लगे हैं। अगर टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाया जा सके कि कौन सा पैनल ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहाँ मेंटेनेंस की जरूरत है, या किस समय एनर्जी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगी, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है।
1: यानी श्रोताओं, अगर आपको कोडिंग पसंद है तब भी रिन्यूएबल एनर्जी आपके लिए हो सकती है।
0: और यही शायद आज के युवाओं के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात होने वाली है।
1: तो हमारे यंग लिसनर्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा रिन्यूएबल एनर्जी से क्या ही कनेक्शन है,
0: कनेक्शन है
1: और बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, आप एनर्जी डेटा पर काम कर सकते हैं श्रोताओं, स्मार्ट ग्रिड्स पर काम कर सकते हैं, एनर्जी फोरकास्टिंग पर काम कर सकते हैं, AI बेस्ड सिस्टम्स बना सकते हैं
0: और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में नए सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं जो कि बहुत नीडेड है।
1: अच्छा रिधि, अगर कोई स्टूडेंट अभी कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे इस फील्ड में जाना है तो वो आज क्या कर सकता है, लाइक कौन सा कोर्स ले सकता है?
0: सबसे पहले क्यूरियोसिटी रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़िए, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, सोलर एनर्जी का बेसिक मॉडल बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के कॉन्सेप्ट समझिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। साइंस एग्जीबिशंस या हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कीजिए,

0: ओके, सो यानी किताब पढ़कर नहीं, आपको कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव, कुछ बनाकर भी सीखना पड़ेगा,
1: सही
0: राइट?
1: कहा मानना, क्योंकि जब आप खुद कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं तब आपको असली प्रॉब्लम्स समझ
0: बिल्कुल
1: आती है।
0: करेक्ट, बिल्कुल समझ आती है। और आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज और लर्निंग रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना। अगर कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज के साथ साथ इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो छोटे कोर्सेज से शुरुआत कर सकता है।
1: और इंटर्नशिप्स भी एक अच्छा रास्ता है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज़ और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है।
0: बिल्कुल, और अगर किसी को रिसर्च पसंद हो तो
1: तब रिसर्च प्रोजेक्ट्स और लैबोरेटरीज की तरफ जाना बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एनर्जी स्टोरेज, बैटरीज, सोलर सेल्स, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्रिड्स, ये सब बहुत तेजी से डेवलप होने वाले एरियाज हैं।
0: हाइड्रोजन की बात आपने करी अभी रिधि हमारे सबके सामने, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा टॉपिक है ना।
1: हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी दुनिया में काफ़ी इंटरेस्ट है। भारत में भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।
0: तो श्रोताओं, अगर आपको लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी बस सोलर पैनल तक सीमित है तो अब शायद पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गई होगी।
1: बिल्कुल, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, रिसर्च है, बिजनेस है और सबसे ज़रूरी बात, एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश है।
0: और मुझे लगता है कि यूथ इस फील्ड में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, अपनी
1: बिल्कुल निभा
0: भूमिका दे सकता है।
1: क्योंकि युवा सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सीख नहीं सकते, वो नई टेक्नोलॉजी
0: बना
1: भी
0: सकते
1: सकते
0: हैं। बिल्कुल, और शायद आज का कोई लिसनर जो अभी ये प्रोग्राम सुन रहा है, भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं।
1: कौन जाने, हो सकता है हमारे बीच का कोई स्टूडेंट कल को साइंटिस्ट हो, कोई एंटरप्रेनर हो, कोई रिसर्चर हो,
0: या फिर कोई एक ऐसा इन्वेस्टर हो जो सूरज, हवा, पानी से एनर्जी लेने का बिल्कुल नया तरीका खोज निकाले।
1: तो श्रोताओं, अगर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट तीनों में इंटरेस्ट है तो रिन्यूएबल एनर्जी एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिए।
0: और याद रखिए, करियर सिर्फ वही नहीं होता जब जिस जो हम किताबों में पढ़ते हैं। कभी कभी सबसे इंटरेस्टिंग करियर श्रोताओं वही होते हैं जिनके बारे में हमने अभी ठीक से जाना भी नहीं होता।
1: तो अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए, सवाल पूछिए, सीखिए, छोटे एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपने लिए नए रास्ते खोजिए।
0: ठीक है, आने वाला समय सिर्फ एनर्जी का नहीं है श्रोताओं, क्लीन एनर्जी का भी है,
1: और शायद उस फ्यूचर को बनाने वालों में आप भी शामिल हो सकते हैं।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ रिन्यूएबल एनर्जी की इस कहानी में, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है श्रोताओं। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोताओ, आपने एक खूबसूरत गीत सुना एक फिल्म एक पहली लीला से, जिसके गायक थे मोहित चौहान, संगीतकार थे टोनी कक्कर और खूबसूरत बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने। मान्या, तुम्हें अपने बचपन की एक चीज़ याद है जो शायद आज भी कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती आ रही है?
6: बहुत सारी चीज़ें याद है वैसे तो रिद्धि, लेकिन अगर तुम रेडियो की बात कर रही हो तो हाँ, मुझे बहुत सारे मोमेंट्स रेडियो को लेके याद हैं।
5: मुझे भी बचपन में जब घर में रेडियो बजता था ना, तो हमें शायद ये भी नहीं पता होता था कि उस डिब्बे के अंदर से आवाज़ आखिर आ कहाँ से।
6: हम बस उसके सामने बैठ जाते थे, कभी गाने सुनने के लिए, कभी समाचार के लिए, और कभी कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में नानी ने रेडियो चला रखा था।
5: और कई बार तो ऐसा होता था कि हम अपने काम में लगे होते थे लेकिन रेडियो पीछे पीछे चल रहा होता था। आवाज़ के घर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी और ऐसा लगता था कि कोई हमसे बातें कर रहा है।
6: सही कहा, और फिर शायद यही रेडियो की सबसे खूबसूरत बात है रिद्धि, इसमें आपको सामने किसी का चेहरा नहीं दिखता, फिर भी आवाज़ से एक रिश्ता बन जाता है।
5: और सोचो मान्या, जब हम रेडियो सुनते थे और आज हम खुद रेडियो पर
6: बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सोचकर ही थोड़ी अजीब सी खुशी होती है, पता है रिद्धि।
5: कभी हम श्रोता हुआ करते थे और आज हमारे सामने कितने सारे श्रोता हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन जिनसे बात करने का एहसास बिल्कुल सामने बैठे किसी इंसान जैसा होता है।
6: और श्रोता, शायद आप में से भी बहुत लोगों की ऐसी रेडियो वाली याद होगी, किसी के घर में सुबह रेडियो बजता होगा, किसी के यहाँ दादा दादी रेडियो सुनते होंगे और किसी ने शायद अपने बचपन की गर्मियों की छुट्टियों में रेडियो सुनते हुए बताई होंगी। क्यों,
5: मैंने भी बिताई ऐसी गर्मियों की छुट्टियां। वैसे तो मुझे लगता है रेडियो सिर्फ आवाज नहीं, रेडियो यादें हैं।
6: और कई बार तो एक पुराना गीत सुनते ही हमें सालों पुराना कोई पल याद आ जाता है,
5: कोई पुरानी सुबह, कोई सफर, घर का आंगन, परिवार के साथ बिताया हुआ समय,
6: या फिर वो समय जब हम छोटे थे और बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्ट्रेस के बस चिल होकर रेडियो सुनते सुनते अपना काम करते रहते थे। और सच कहो रिद्धि, ये अवसर हमारे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम करने का मौका नहीं है, ये हमारे लिए एक भावना है, क्योंकि जिस माध्यम को हमने बचपन में सुना, आज इसी माध्यम का हिस्सा बनकर लोगों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं।
5: सही कहा मान्या, और यही तो रेडियो की खासियत है, ये पीढ़ियों को जोड़ता है।
6: पहले लोग रेडियो के आसपास बैठकर कार्यक्रम सुना करते थे, फिर समय बदला, तकनीकें बदली, लेकिन रेडियो की आवाज़ आज तक लोगों तक पहुंचती है।
5: भारत में रेडियो का इतिहास भी बहुत पुराना है, रेडियो प्रसारण ने देश में सूचना, शिक्षा और

0: मनोरंजन पहुंचाने में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल, और सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि गांव और दूर दराज के इलाकों तक भी आवाज पहुंचाने में रेडियो ने बहुत बड़ा रोल निभाया है,
0: जो कि वो आज भी निभा रहा है। सोचिए, जब हर घर में इंटरनेट नहीं था, जब हर हाथ में मोबाइल नहीं था, तब एक रेडियो ही था जो दुनिया की खबरें लोगों तक पहुंचाता था।
1: समाचार हो, संगीत हो, कृषि से जुड़ी जानकारी हो, शिक्षा हो, देश दुनिया की कोई भी महत्वपूर्ण बात हो, रेडियो ने हर तरह की आवाज को लोगों तक पहुंचाया है।
0: और शायद इसी वजह से रेडियो सिर्फ एक कम्युनिकेशन मीडियम नहीं रहा, ये लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है।
1: बिल्कुल, और आज भी इसकी खूबसूरत बात यही है कि इसे सुनने के लिए आपको अपनी आंखों पर आंखें स्क्रीन पर टिकाकर नहीं रखनी पड़ती है।
0: आप खाना बनाते हुए रेडियो सुन सकते हैं,
1: सफर करते हुए सुन सकते हैं,
0: चाय पीते हुए
1: या फिर शाम को आराम करते हुए भी सुन सकते हैं,
0: और रेडियो आपके साथ
1: बस चलता रहता है। मुझे लगता है ना कि रेडियो की आवाज में एक अपनापन होता है। जब कोई रेडियो पर आपसे ये कहता है कि श्रोताओं आप सुन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आकाशवाणी उज्जैन, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सच में आपसे बात कर रहा है।
0: सही कहा, और आज हम भी यही महसूस कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि किस वक्त हमारी आवाज कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, कौन हमें सुन रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन अपने काम के बीच हमारी बातें सुन रहा है।
1: बस हमें इतना पता है श्रोताओं कि दूसरी तरफ कोई तो है, और वही तो रेडियो का जादू है। उसकी असली कहानी तो श्रोताओं के दिलों में लिखी जाती है,
0: और शायद इसी वजह से रेडियो इतने सालों बाद भी हमारे बीच है, क्योंकि तकनीक बदल सकती है
1: लेकिन इंसान की किसी आवाज को सुनने की चाह और किसी से जुड़ने की जरूरत कभी भी श्रोताओं पुरानी नहीं होती है।
0: बचपन में हमने रेडियो सुना था,
1: और आज उसी रेडियो पर बैठकर हम आपसे बातें कर रहे हैं।
0: क्या इससे खूबसूरत सफर हो सकता है मान?
1: बिल्कुल नहीं। चलिए श्रोताओं, इस सुहानी शाम में एक और गीत सुनते हैं, और हमारी बातचीत हम ऐसे ही इस गीत के बाद कंटिन्यू करते रहेंगे।

0: श्रोताओं, आपने अभी सुना रमैया अवस्थावैया का एक बहुत ही मधुर और मनमोहक गीत आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, संगीतकार सचिन जिगर, गीतकार प्रिया पांचाल।
1: तो मान्या, अभी गीत से पहले हमने बात की थी रेडियो की खूबसूरत बातें, और सच में रेडियो के बारे में बात करते करते मुझे एक बहुत बड़ी बात महसूस हो रही है कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये कम्युनिकेशन का एक बहुत खूबसूरत मीडियम भी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने रिधि। और अगर हमारे श्रोताओं में कोई ऐसा युवा है जिसे लोगों से बात करना पसंद है, अपनी बात शब्दों के जरिए रखना पसंद है, या फिर जिसे लगता है कि उनकी आवाज़ में कुछ कहानियाँ छिपी हुई हैं, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया और कम्युनिकेशन की फील्ड उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। क्यों?
1: और देखो मान्या, मीडिया का मतलब सिर्फ टेलीविज़न पर न्यूज़ पढ़ना या रेडियो पर प्रोग्राम करना ही नहीं होता है। आज मीडिया बहुत बड़ा क्षेत्र है।
0: बिल्कुल, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, जर्नलिज्म, पॉडकास्टिंग, डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, एंकरिंग, वॉइस ओवर, प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, कितने सारे रास्ते हैं, है ना?
1: यस, और अगर किसी को बोलना पसंद है तो ये फील्ड उसके लिए खास तौर पर बहुत एक्साइटिंग हो सकती है, क्योंकि यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है।
0: लेकिन एक बात मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ रिद्धि, कि सिर्फ अच्छा बोल लेना ही काफ़ी नहीं होता है, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सुनना भी सीखना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ अपनी बात बोलने का नाम नहीं है, सामने वाले की बात समझना और सुनना भी उतना ही जरूरी है।
0: अगर कोई युवा इस फील्ड में आना चाहता है श्रोताओं, तो शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। अपने कॉलेज में एंकरिंग कीजिए, किसी इवेंट को होस्ट कीजिए, डिबेट में हिस्सा लीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए,
1: या फिर अपना छोटा सा पॉडकास्ट शुरू कीजिए। आज तो मोबाइल फोन से भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जरूरी नहीं कि शुरुआत में आपके पास पूरा स्टूडियो ही हो।
0: हाँ, शुरुआत में बस एक आवाज होती है, एक आइडिया होता है और सीखने की इच्छा होती है,
1: और धीरे धीरे आप अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस पर काम कर सकते हैं।
0: और यदि अगर तुम्हें मैं पर्सनली एक बात बताऊं, तो शायद बहुत से श्रोताओं को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा ना।
1: कौन सी बात मान्या?
0: मैं हमेशा से इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी।
1: सच में?
0: एक्चुअली हाँ, पहले लोगों के सामने बोलने में मुझे काफ़ी हेजिटेशन होता था। मैं बहुत सोच समझ के बोलना ज़्यादा पसंद करती थी, मन में बहुत सारी सवाल आती थी, मैं ठीक बोलूँगी या नहीं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, थॉट प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था। आई यूज़ टू फील सो स्टक।
1: ये तो बहुत रिलेटेबल हो गया, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुझे लगता था बहुत सारे युवा इसी चीज़ से गुजरते हैं।
0: और फिर जब मुझे रेडियो पर बोलने का मौका मिला ना, तो धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक दिन आपको सिल्वर प्लेटर में सर्व कर दी जाएगी।
1: फिर
0: तो प्रैक्टिस होती गई, आता गया, मैं डरी नहीं, पीछे मुड़ी नहीं। हर बार माइक्रोफोन के सामने जब बैठना पड़ा, अपनी आवाज़ सुना, अपनी गलतियों को समझा, और अगली बार थोड़ा और बेहतर बनने की मैंने कोशिश करी।
1: तो बहुत ही लाजवाब बात है कि तुमने इतनी मेहनत करी और अब तुम इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। यानी रेडियो ने तुम्हें सिर्फ बोलने का मौका नहीं दिया, तुम्हें खुद भरोसा करना भी सिखाया।
0: और शायद रिधि यही सोशल मीडिया या फिर ऐसे किसी भी यू नो प्लेटफॉर्म की बहुत खूबसूरत बात होती है, कि आप सिर्फ ऑडियंस से बात नहीं करते, आप खुद को भी धीरे धीरे करके ऐसे डिस्कवर करते हैं।
1: सही कहा मान्या, बहुत ही अपनी बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। पर श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे तनुवेल्स, आप सुन रहे थे बद्रीनाथ की दुल्हनिया का एक बहुत ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, संगीतकार अमाल मलिक और गीतकार कुमार। वैसे श्रोताओं और रिद्धि,
1: अगर आपने कोई किताब पढ़ने का सोचा था, आज से एक पन्ना पढ़िए। कोई नई स्किल सीखनी थी, आज से 10 मिनट दीजिए।
0: परीक्षा की तैयारी शुरू करनी थी, आज एक टॉपिक से शुरुआत कीजिए।
1: और अगर आपने सिर्फ इसलिए कुछ शुरू नहीं किया क्योंकि आपको लग रहा था कि अब तो समय निकल गया है, तो इस सोच को आज से ही छोड़ दीजिए।
0: क्योंकि समय का गुजारना हमारे हाथ में नहीं होता श्रोताओं, लेकिन बचे हुए समय का इस्तेमाल हमें कैसे करना है वो हमारे हाथ में ज़रूर होता है।
1: तो श्रोताओं, अगस्त को सिर्फ

0: कैलेंडर का एक और महीना मत समझिए, इसे एक छोटा सा रिमाइंडर समझिए कि साल आगे बढ़ रहा है और हमें भी आगे बढ़ना है।
1: और हाँ, 2027 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सपना है, कोई योजना है, कोई परीक्षा है या कोई काम है, तो उसकी शुरुआत 2027 में नहीं, आज भी हो सकती है। श्रोता
0: तो श्रोताओं, चलिए सुनते हैं एक और गीत आपके लिए।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये बेहद खूबसूरत गीत फिल्म काइट से, जिसके गायक थे के, संगीतकार थे राजेश रोशन और गीतकार थे नासिर पुराज। तो श्रोताओं, देखते ही देखते हमारा आज का ये खूबसूरत युवाणी का कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है।
1: आज हमने कितनी सारी अलग अलग और दिलचस्प बातों पर चर्चा करी है श्रोताओं। कभी ऊर्जा, हमारे भविष्य की बात हुई, कभी रेडियो की यादों में हम लौटे, कभी अपने करियर और सपनों के बारे में सोचा।
0: बिल्कुल, उम्मीद है आज की हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी,
1: आपको कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपके चेहरे पर कुछ ना कुछ बात पे तो मुस्कान आई ही होगी।
0: तो उसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाजत।
1: मैं हूँ माना।
0: और मैं हूँ रिति।
1: आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
0: फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, नई बातचीत और नए विषय के साथ।
1: तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए।
0: अब हम आपसे अलविदा लेते हैं।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि सादर अभिनंदन करती हूँ सभी श्रोताओं का कार्यक्रम भजन संध्या में। आज की शाम बात उस एहसास की जो दिखाई नहीं देता लेकिन दिलों को करीब ले आता है, बात है सद्भावना की। 20 अगस्त को हर साल हम मनाते हैं सद्भावना दिवस। प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को समर्पित यह दिन। सद्भावना का अर्थ है दूसरों के सुख में अपना सुख देखना और दूसरों के दुख को समझना। महात्मा गांधी जी का संदेश था कि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। कितनी सरल बात है और शायद जीवन की सबसे बड़ी सीख भी। तो आज भजनों के सुरों के साथ हम बात करेंगे अपनत्व की और मन की शांति की। आइए मन के सारे भेद थोड़ी देर के लिए किनारे रखें और शुरुआत करें ईश्वर के इस मधुर स्मरण के साथ।

श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस शांति की शुरुआत कहाँ से होगी? शायद हमारे अपने मन से। जब मन में प्रेम होता है तो शब्दों में मिठास अपने आप आ जाती है। जब मन में सम्मान होता है तो मतभेद भी रिश्ते नहीं तोड़ते। महात्मा गांधी ने कहा था कि कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा ताकतवर का गुण है। किसी को माफ़ कर देना भी सद्भावना है और किसी की बात को बिना तुरंत जवाब दिए सुन लेना भी सद्भावना है, और किसी के अलग होने को स्वीकार कर लेना यही तो बड़ी बात है। तो आज अपने मन से एक छोटा सा सवाल कीजिए, क्या मैं किसी के जीवन में शांति की वजह बन सकता हूँ? इसी भाव के साथ आइए सुनते हैं आज का पहला मधुर भजन।

श्रोताओं, हमारा भारत अनेक रंगों से सजा हुआ देश है। भाषाएं अलग, पहनावे अलग, परंपराएं अलग, लेकिन दिलों में बसने वाली भावनाएं तो एक जैसी हैं। हर प्रार्थना में सुख की कामना है और हर त्यौहार में खुशियां बांटने की परंपरा है। यही हमारी सबसे सुंदर पहचान है, विविधता में एकता। स्वामी

विवेकानंद ने संदेश दिया था कि जितने मत उतने पथ, अर्थात रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल की तलाश वही रहती है। उज्जैन की धरती भी तो सदियों से आस्था और संस्कृतियों के मिलन की साक्षी रही है, तो क्यों ना हम भी अपने आसपास के हर रंग का सम्मान करें, किसी को बदलने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। और इसी खूबसूरत भावना के साथ आइए बढ़ते हैं अगले भजन की ओर।

श्रोताओं, सद्भावना की सबसे खूबसूरत परीक्षा होती है हमारे अपने रिश्तों में, क्योंकि अपनों से ही कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। कभी एक शब्द रिश्ते में दूरी ले आता है और कभी एक प्यार भरा शब्द वही दूरी मिटा भी देता है। इसलिए कम बोलिए लेकिन सोच कर बोलिए। किसी की गलती याद रखने से बेहतर है कि उसकी अच्छाई याद रखना। किसी को नीचा दिखाने से बेहतर है उसका हाथ थाम लेना। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्ति है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अर्थात क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर शक्ति हो। जो आज किसी रूठे हुए अपने को याद कर रहे हैं, शायद एक फोन, एक संदेश या सिर्फ एक मुस्कान से वह दूरी मिट सकती है। तो श्रोताओं, आइए रिश्तों में प्रेम का एक और दीप जलाएं। इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला भजन।

श्रोताओं, सद्भावना केवल अच्छी बातें करने का नाम नहीं है। यह तब दिखाई देती है जब हम किसी दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी अकेले व्यक्ति से दो शब्द बोलना, किसी बुज़ुर्ग का हाल पूछना, या ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, बल्कि यही सद्भावना का रूप है। कभी कभी हमारी छोटी सी संवेदना किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाती है। गौतम बुद्ध का संदेश था कि घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, प्रेम से ही शांत हो सकती है। कितना गहरा और सरल संदेश है। इसीलिए जहाँ कटुता मिले वहाँ मधुर बनने की कोशिश करें, जहाँ दूरी दिखे वहाँ संवाद का हाथ बढ़ाएं, और जहाँ कोई दुखी मिले वहाँ संवेदना बनकर पहुँचें। क्योंकि भक्ति केवल मंदिर तक नहीं, हमारे व्यवहार से भी पहुँचनी चाहिए। इसी भाव के साथ आइए श्रोताओं, सुनते हैं प्रभु के चरणों में समर्पित अगला भजन।

श्रोताओं, आज इस भजन संध्या को विराम देने से पहले एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, मतभेद होंगे लेकिन मनभेद नहीं होने देंगे। किसी की बात अलग हो तो उसे सुनने का धैर्य रखेंगे, जहाँ संभव होगा वहाँ मदद करेंगे और अपने शब्दों से किसी के मन को अनजाने में चोट न पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सद्भावना किसी बड़े मंच से नहीं, छोटे छोटे व्यवहार से जन्म लेती है। कबीर का संदेश है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी हमारी वाणी ऐसी हो जो हमारे साथ साथ सामने वाले के मन को भी शीतल करे। बस यही भावना लेकर आज की शाम अपने मन में संजो लीजिए, सम्मान दीजिए, प्रेम बांटिए और मुस्कान लौटाइए। और इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला भजन।

श्रोताओं, इस सद्भावना दिवस पर हम अपने भीतर एक छोटा सा दीप जलाएं, प्रेम का, शांति का और मानवता का। इसी प्रार्थना के साथ आपकी रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति, आपके मन में शांति हो, रिश्तों में अपनापन बना रहे। फिर मिलेंगे भक्ति और मधुर से सजी एक और शाम में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सुनते रहिए FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी।

0: उज्जैन, नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक है कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: बाड़ी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसान बाड़ी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
0: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे सभी कृषक भाई बहनों और श्रोताओं को पुष्पा बहन की राम राम। घड़ी में बज रहे 7:30 और आप सभी सुन रहे हो किसान वाणी। सो भैया बहन हरो, दिन भर की मेहनत के बाद तनक आराम कर लियो। बताओ भैया बहन हरो, खेतों में काम काज कैसे चल रहे हैं? सभी काम ठीक ठाक आज निपट गए हुए? सो आज संजा बिरिया बैठे बैठे जरूर सुन लियो किसान वाणी में बहुत ही जरूरी जरूरी बातें। भैया हरो, आज है 20 अगस्त और हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाऊत है। सो घबराइयो ने, आज हम मच्छर को भगावे के आसान तरीका सोई बता है। देखो भैया बहन हरो, बसकारी में और बसकारी के बाद बहुत ही मच्छर बढ़ जाते हैं। बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी मच्छर के काट भी सही फैलत है कि नहीं? यही से तो हम सब विश्व मच्छर दिवस मनाऊत है और हम सबई को याद दिलाऊत है कि जिस छोटे छोटे मच्छर बड़े बड़े रोग पैदा कर दिए थे। सो आज को दिन हम सबई के लाने बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं ताकि हम सब जागरूक रहें, सजग रहें और सतर्कता बरतें और मच्छरों को पनपने दें। और विश्व मच्छर दिवस को संदेश भी जो है हम सबई के लाने कि रोकथाम सबसे बड़ो इलाज है। सुनो भैया बहन, भौजी काकी हरो, मच्छर भगावे के देसी जुगाड़ हम बताए देते हैं, खर्चा भी न लगे। पहलो उपाय है पानी जमाने होन दियो अपने आसपास। भैया बहन हरो, गर्मी के दिन ने कर गए सो कूलरों की साफ सफाई करके धर लियो और इतने उतने टायर फेंक दे तो उनमें पानी भर जाते है। इस समय गमलों में खूब पानी भर रहा है बसकारो जो लगो है। सो ध्यान रखियो कूलरों में, गमलों में और टायरों में पानी जमाने हो पावे, कैसे मच्छर अंडा इतना ही देते हैं। और दूसरा उपाय है भैया हरो, घर के आसपास की सफाई नोनी रखियो। चारों तरफ पेड़ पौधों की झाड़ियाँ जो हो जाते हैं सो कटाई छटाई बिल्कुल रोज करते ही रहियो और कचरा इतने उतने फेंकियो और घर आंगन नालियों की साफ सफाई रखियो। काहे की कीचड़ में गंदगी में मच्छर सबसे ज्यादा होते हैं और रात में सो समय मच्छरदानी लगा के सो जाइयो। खिड़की दरवाजे पे जाली जरूर लगवा लियो और संजा बिरिया सूखी नीम की पत्तियों को धुआं जला ले हो सोई मच्छर भाग जे है। और हमारे सभी भैया बहने बेटा बिटिया हरे संजा बिरिया से ही फुलवाहे की कमीज और पैजामा पेंट पहन ली में, इसे फिर मच्छर काटे न पे है। और भैया बहन हरो, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है यदि बुखार आवे, सिर दर्द होवे, उल्टी बुखार आवे तो तुरंत ही नजदीकी अस्पताल जाके खून की जाँच करवाइयो और समय पे इलाज करवा ताकि स्वस्थ रहो। और हम तो विश्व मच्छर दिवस पर जय के वो चाहते हैं कि स्वस्थ निरोगी तन रहे, उत्तम रहे विचार, उत्तम स्वास्थ्य चरित्र रहे मानव तन को सार। भैया बहन हरो, दिन भर खेत खलियानों में मेहनत करत हो और खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन भी करत हो और संजय बिरी आके पशुओं की देखभाल आहार व्यवस्था को सोई ध्यान रखत हो। सो हम सब भी जो चाहते हैं कि हमारे किसान भैया बहने अपने पशुओं को खूब ध्यान रखें ताकि स्वस्थ रहें।

0: उत्तम स्वास्थ्य हेतु कौन कौन सी चारा फसलों का प्रबंधन हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए?
1: पशुओं के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हमारे किसान भाइयों को चारे की फसलों में, जैसे चारे की फसलें तीन मौसम में लगाई जाती हैं, खरीफ में, रबी में और जायद में, मतलब गर्मी में। तो खरीफ में हमारे किसान भाइयों को लोबिया है, नेपियर ग्रास है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और ग्वार है। इसके साथ साथ रबी में हमारे किसान भाइयों को हरा चारा लेना है पशुओं के लिए, तो बरसीम है, रिजका है, जई है, इन फसलों को लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही क्या होता है, गर्मियों में सबसे अधिक पशुओं को हरे चारे की आवश्यकता होती है उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए, उनसे अच्छा दुग्ध उत्पादन लेने के लिए। इसलिए हमारे किसान भाइयों को गर्मियों के दिनों में भी हरे चारे की व्यवस्था करना चाहिए। किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा है कि वो ज्वार की जो हमारी चरी वाली किस्में हैं उनको लगाए, मक्का लगाए, इनसे हरा चारा प्राप्त करें और किसान भाई उनको खिलाए, जिससे कि अच्छा दुग्ध उत्पादन मिले और उनका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन बात आती है ऐसी कौन सी चारा फसल हमारे किसान भाई उगाएं जो वर्ष भर जो है उन्हें पशुओं के लिए न्यूनतम चारा उससे प्राप्त होता रहे।
1: ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमको किसान भाइयों को एक ऐसी फसल लगाना चाहिए कि जिससे उनको वर्ष भर चारा मिलता रहे, क्योंकि पशुओं को तो उन्हें वर्ष दर वर्ष रखना ही है अपने पास। तो इसमें मेरा किसान भाइयों से कहना यह है कि एक घास है जिसे हम नेपियर घास या हाथी घास, ये बाजरा जैसी दिखने में लगती है, इस घास का किसान भाइयों को उत्पादन लेना चाहिए, इसकी खेती करना चाहिए। और इस घास में कुछ बाजरे जैसे आदर्श गुण होते हैं, जैसे कि चारा कैसा होता है, इसका रसीला रहता है, घनी पत्तियां रहती हैं, इसकी बढ़वार बहुत शीघ्र होती है और इसमें प्रोटीन अच्छा रहता है और शर्करा की मात्रा रहती है। इतने सारे गुण होने के कारण ये चारा फसल उत्तम गुण है, इसलिए अच्छी होती है और इससे हम किसान भाई वर्ष भर हरा चारा ले सकते हैं। वर्ष भर के अलावा वो एक वर्ष नहीं, उससे अगर उसका अच्छा प्रबंधन करेंगे, उसमें अच्छी कृषिगत क्रियाएं करेंगे, तो 3 से 4 वर्ष तक वो लगातार निरंतर उससे हरा घास लेते रहेंगे।
0: ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई है, लेकिन जो नेपियर घास होती है इसका स्वभाव कैसा होता है डॉक्टर साहब? किस तरह की जलवायु में इसको हम लगा सकते हैं या इसके लिए किस तरह की खेती की आवश्यकता होगी? हाँ,
1: कैसी भूमि हमको चाहिए? किसी भी फसल के लगाने के लिए जहाँ पर लगाई जा रही है वो जलवायु का उत्तम होना, उसके अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तापमान जहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस रहता हो, वर्षा अच्छी हो, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक हो, इसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी बढ़वार के लिए मार्च से सितंबर की अवधि बहुत अनुकूल मानी गई है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर, यदि इसको 500 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में भी आसानी से किया जा सकता है, यदि वहाँ पर उनके लिए पर्याप्त सिंचाई का साधन उपलब्ध है। लेकिन सर्दी जब अधिक पड़ती है, जैसे मान लीजिए दिसंबर जनवरी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन लिया जा रहा है, तो वहाँ पर इसकी वृद्धि सर्दी अधिक होने के कारण कम हो जाती है, लेकिन इसको नष्ट नहीं होती है। अब इसका क्या है, इसके लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होगी? इसके लिए या अधिकतर चारे वाली फसलों के लिए हमको ऐसी भूमि का चयन करना है जो कैसी हो, उत्तम जल निकास वाली होना चाहिए, जब पानी का जल निकास अच्छा हो। यदि बलुई दुमट भूमि है, दुमट मतलब जिसमें रेत की मात्रा भी अच्छी है, उससे क्या होता है, उसमें जल का निकास अच्छा होता है, ऐसी भूमि इसके उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
0: बिल्कुल, तो जल निकास उत्तम होना चाहिए, ऐसी भूमि जो है नेपियर घास के लिए बहुत बढ़िया होती है। गर्ग साहब, आप ये बताएं कि यदि खेत की तैयारी करना है, यदि घास लगाने के लिए, तो किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे हम?
1: हम जिस खेत में नेपियर घास लगाना चाहते हैं उस खेत के लिए हमें कम से कम उसको 2-3 बार अच्छी तरह से जुताई करने की जरूरत है, जिससे हमारी भूमि कैसी बन जाए, भुरभुरी बन जाए, और ऐसी भूमि को हमको समतल कर लेना चाहिए पाटा चला करके, पूर्व फसलों के अवशेष नहीं रहना चाहिए, मतलब खेत हमारा बिल्कुल साफ सुथरा और 2-3 बार उसकी जुताई हो और उसको मिट्टी को भुरभुरी कर ले, मतलब ढेले नहीं रहे और खेत समतल हो जाना चाहिए। ऐसा खेत हमारे लिए या ऐसी भूमि हमारे लिए नेपियर घास को उत्पादन के लिए बहुत अच्छी तैयारी मानी जाती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, नेपियर घास की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। कई बार जो है बीज होते हैं तो बीजों की बुआई करते हैं, तो नेपियर घास किस तरह से और उपलब्ध कैसे होगी खासतौर से बीज के लिए?
1: नेपियर घास की किस्में बहुत अच्छी हैं अपने यहाँ, ऐसी किस्मों को लगाना है जिनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो और मिठास भी हो, हमारे पशु बहुत स्वादिष्ट तरीके से खाएं। पूसा जायंट है, पूसा जायंट एक किस्म से 25% प्रोटीन है और 12% शर्करा है। दूसरी वेराइटी है नेपियर हाइब्रिड बाजरा, NB21 वेराइटी है, इसे भी हम लगा सकते हैं। APBN एक वेराइटी है, इसका भी है। उसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से निकली हुई पूसा नेपियर 1 है और पूसा नेपियर 2 है, जो सर्दियों में भी अच्छा

0: उत्पादन देती है। यदि तापक्रम नीचे जाता है उसके बाद भी पूसा नेपियर एक और पूसा नेपियर दो, इनसे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोने के लिए सबसे वर्षाधीन जहाँ क्षेत्र है, जहाँ वर्षा होती है, मानसून पर है, इसकी बुवाई हमको मानसून के बाद जून जुलाई में कर देना चाहिए। यदि सिंचित क्षेत्र है कि जहाँ वर्ष भर हमको पानी देने की व्यवस्था रहेगी तो आप फरवरी में कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बुवाई का जो समय माना गया है वो फरवरी मार्च माना गया है कि फरवरी मार्च में यदि हम इसकी बुवाई करते हैं तो सबसे उत्तम मानी जाती। अब ये तो बुवाई का समय है, अब इसको बोने के लिए दो विधियां हैं
1: जी।
0: इनके बोने के लिए तना कटिंग या जड़ कटिंग या प्रकंद, इनका उपयोग किया जाता है, इसके बीजों को नहीं बोया जाता। जैसे हम गन्ना के लगाते हैं ना, गन्ना की कटिंग लगाते हैं
1: जी,
0: ऐसे ही इसके टुकड़े लगाए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसके टुकड़े लगाए जाते हैं और इनको 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर हम बो देते हैं। इसको बोने के दो विधियां हैं, एक तो कुआं में बुआई करना चाहिए किसान भाइयों को, और दूसरी बुआई करना चाहिए इसके टुकड़ों को 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाना चाहिए। तो कुआं में बुआई करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा खेत लें जिसमें पर्याप्त नमी हो, क्योंकि हम जो भी कोई बुआई करते हैं किसी फसल की तो नमी होना उसमें पर्याप्त आवश्यक। उस समय हम क्या करते हैं 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कूड़ बना देते हैं और दूसरा क्रॉस में कूड़ बनाते हैं हम, इसका अंकुरण हो जाता है, अंकुरण के बाद हम फिर इसमें सिंचाई करते रहते हैं। फिर भूमि आपकी कैसी है, माली भूमि आपकी थोड़ा हल्की है तो हमको जल्दी सिंचाई करना पड़ेगी, भूमि यदि हमारी भारी है तो हम 20 दिन पर सिंचाई करेंगे, तो पहली विधि दीजिए। दूसरी विधि क्या है, टुकड़ों को 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाना। इसमें क्या करते हैं, खेत में कूड़ बना देते हैं और दोनों कूड़ के साथ क्रॉस आते हैं
1: जी।
0: उस पर हम कटिंग को खड़ी लगाते हैं, तो जो कटिंग लगा रहे हैं उसका एक बड दो कली कम से कम हर कटिंग में होना चाहिए, एक कटिंग हमारी जमीन के अंदर जाए और दूसरी बड ऊपर रहे और उसको 45 डिग्री के कोण पर झुका के लगाया जाता है। लगाने के बाद उनको सब कटिंग को हम दबा देते हैं, दबाने के बाद फिर उनमें हम सिंचाई कर देते हैं और हर बार 15 से 20 दिन के अंतर हमें इस प्रकार से सिंचाई करते रहना चाहिए। ये दो विधियां हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपने ये दोनों विधियां बताई, इनको बुआई कैसे करें ये भी आपने बता दिया, इसमें उर्वरक वगैरह की भी आवश्यकता रहती है क्या?
0: इनकी बुआई के पूर्व हमको 40 से 50 किलो नाइट्रोजन डाल देना चाहिए पहले खेत में प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 किलो इसको डाल देना चाहिए और 20 से 30 किलो पोटाश हमको खेत में डाल के फिर बुआई करना चाहिए। बुआई के बाद पहली कटाई हम जो करते हैं वो 70 से 80 दिन में करते हैं, तो हर कटाई के बाद हमको फिर 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन हर कटाई के बाद डालना है। जैसे मान लो अपन 6-7 कटाई एक वर्ष में कर रहे हैं तो हर कटाई के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का उपयोग करना पड़ेगा जिससे हमारी बढ़वार अच्छी हो और अच्छा चारा हमको मिल जाए।
1: तो डॉक्टर साहब काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। अब आप ये बताएं कि नेपियर घास को अगर लगाया है तो उसकी कितने दिन में कटाई हो सकती है, मतलब कितने दिन में वो जो है पशुओं के चारे का उपयोग हम उसको कर सकते हैं?
0: नेपियर घास की प्रथम कटाई जैसे मैंने कहा 70 से 80 दिन में करना चाहिए। अगर आपने अच्छी जो अपन बता रहे हैं इस तरीके से आपने प्रबंधन किया है तो 70 दिन में आपकी कटाई के लिए वो हो जाती है। तो पहली कटाई करते हैं, हर कटाई में हमारे किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि कम से कम कटाई 2 इंची ऊपर से करना है। इससे करने से क्या होगा, दूसरी बार जब उसकी बढ़वार बहुत तेजी से हो, अगर हम जमीन के आधार से काट देंगे तो बढ़वार की वृद्धि नहीं होगी। दूसरी कटाई के बाद हर कटाई हमको 35 से 40 दिन करना है, हर कटाई के बाद हमको एक बार 40 किलोग्राम नाइट्रोजन अवश्य देना है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी खाद है इसको देने से बढ़वार बहुत अच्छी होती है। और किसान भाई को एक बात और ध्यान रखना है, केवल रासायनिक खाद नहीं, खेत की तैयारी के समय उसको 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में अवश्य डालना है जिससे हमारा और अच्छा उत्पादन हमको मिले। 3 से 4 वर्ष तक इसकी कटाई करते रहेंगे और प्रतिवर्ष कम से कम 6 से 8 कटाइयां हम कर सकते हैं और एक साल की कटाई में इससे 150 से 200 टन यानी 1500 से 2000 क्विंटल तक हम हरा चारा इससे प्राप्त करेंगे।
1: तो किसान भाइयों इस तरह से यदि आप नेपियर घास का उत्पादन करते हैं तो ये पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत आसान है लगाना और एक बार आप लगाते हैं तो लगभग 4 साल तक इसकी आप कटाई आसानी से करके अपने पशुओं को जो है खिला सकते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग साहब आप यहाँ पर आए हमारे स्टूडियोज में, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य हेतु चारा प्रबंधन पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी किसान भाइयों को राम राम।
2: सो बहुत ही बढ़िया जानकारी हती पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लाने चारा प्रबंधन पे छेची सलाह दे दी विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी ने। सो किसान भैया हरो उम्दा उम्दा प्रश्न पूछ रहे हते महेश भैया। सो आज हम सब ने सीख ले ली के हरो चारो चोकर चुनी दे

पशुओं को सान, दूध दही घी से रहे हमारे सभी संपन्न किसान। भैया बहन हरो, बातें हो गई, चर्चा कर लई, जानकारी सुन लई। कहते हैं खेतों की मेहनत के बाद मल्हार गीत की एक तान साउन की याद दिलाऊ थे और तन मन की थकान उतर जाते है। सो देखो बदरा भी घिरे आए हैं। सो हम सभी को मन कर रहा है लोक गीत गावे को और सुनवे को। भोरा करत है गुंजार, सखियां गा रही गीत मल्हार। सो सुनत है मंजू मिश्रा के सुरीले स्वर में प्यारो सो मल्हार गीत।

0: ये बहनहरों मन एकदम खुश होगा मल्हार गीत सुन के। लोक गीतों की धुन और बेटा बिटियाहरों की किलकारी तन मन को खुश कर दी थे। और हम सबई तो जो ही चाहत है कि जा किलकारी हर घर में गूंजत रहे। सो ई के लाने उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखवो भैया बहनहरो बहुत ही जरूरी है। सो भैया भौजी हरो हमारी बात ध्यान से सुन लियो। आज हम शिशु टीकाकरण की बातें कर रहे हैं। जे टीका अपने लला लली को 10 से 12 खतरनाक बीमारियों से बचाओ थे। सो भैया बहनहरो टीका को लेकर 3 बातों की गांठ बांध लियो। पहली है कि जन्म के बाद 6 हफ्ता 10 हफ्ता और 14 हफ्ता और 9 महीना में आंगनबाड़ी दीदी आपको कार्ड बना दे है, ऊपर तारीख लिख दे है। सो फिर उ तारीख को भूलियो ने समय पर टीका लगवात रहियो। और दूसरी बात जा है कि भैया बहनहरो टीका लगवावे के बाद हल्को बुखार सुई आ जाते है। सो डरियो ने घबरियो ने ई निशानी से पता चल जाते है कि टीका अच्छे से काम कर रहा है। और सबसे जरूरी तीसरी बात जा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी में पोलियो, खसरा, टिटनस, निमोनिया, टीबी जैसी बीमारियों के टीका बिल्कुल निःशुल्क लगाते हैं। और फिर हमारे बेटा बिटिया रहे हमेशा सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। भैया बहने आलस तो बिल्कुल न करियो। याद रखियो कल ही जाके अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में और आंगनबाड़ी दीदी या ENM से मिलकर टीकाकरण कार्ड बनवा लियो। सुनो भैया बहनों, यदि एक ही टीका छूट गयो तो कहते हैं पूरी सुरक्षा कवच कमजोर हो जाते है। सो टीकाकरण करियो और बेटा बिटियारों को स्वस्थ बनाए रहियो। किसान भैया बहनों, इस समय सोयाबीन की फसल में घास फूस बहुत ही उग जाते है। सो जंगली घास को नियंत्रण करवो बहुत ही जरूरी है, तभी तो सोयाबीन उत्पादन न हुई है। सो सुनो जानकारी, सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज कुमार तरवरिया।
1: आज हम बात करेंगे सोयाबीन की समेकित खरपतवार प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार एक प्रमुख समस्या होती है। कई किसानों ने सोयाबीन की फसल की बुवाई कर ली होगी, कुछ ने लेट की होगी। किसान भाइयों, समेकित खरपतवार वो वैज्ञानिक विधि होती है जिसमें हम खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एक विधि पर निर्भर न रहकर हमें कई विधियों का उपयोग करना है, जिसमें हम निवारण सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक, रासायनिक और कृषि क्रियाओं के साथ सही समय पर उपयोग करना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों यह होता है कि हमें किसी एक विधि पर निर्भर नहीं रहना है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही उस खरपतवार का प्रबंधन करना है। किसान भाइयों, खरपतवार वो अनचाहे बीट्स होते हैं जिन्हें किसान अपने खेत में बोता नहीं है, स्वयं ही उग जाते हैं। इनके कंट्रोल की काफी सारी विधियां हैं, जिसमें हम निवारण है, उन्मूलन है, रासायनिक विधियां हैं। किसान भाइयों, निवारण विधि वही होती है जिसमें हम समय रहते हुए खेत का जो भी खरपतवार उग रहे हैं उनका कंट्रोल करना है। उन्मूलन, उनको जड़ से उखाड़ लेना है किसान भाइयों। और रासायनिक विधि के द्वारा हम जो सोयाबीन का खेत है उसको समय रहते हुए उनका दवा का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जैसे कि खेत में जब बुवाई हो जाती है सोयाबीन की फसल, उस समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसमें प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस जो रासायनिक दवा होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। प्री इमरजेंस दवा का प्रयोग बुवाई के 2 से 3 दिन बाद कर देना चाहिए, जबकि पोस्ट इमरजेंस दवा का प्रयोग हमें बुवाई के 25 से 30 दिन बाद कर देना चाहिए। इसमें कुछ दवाएं जैसे कि पेनिसिलिन प्री इमरजेंस में आती, पोस्ट इमरजेंस में एमेजाथायपा 70% WP, ये सारी दवाएं आती है। किसान भाइयों, हमें जब दवा का स्प्रे करें उस समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दवा डालते समय हमें तेज गति से नहीं चलना है बल्कि हमें धीमी गति से चलना है। तेज हवा और वर्षा की संभावना हो या वर्षा के दौरान हमें छिड़काव ना करें। छिड़काव करते समय खेत में नमी होना चाहिए, दवा का घोल एक समान बनाना चाहिए तथा उनको प्रयोग करते समय खेत में हमें कौन कौन सी सुविधाएं रखना है उनमें दस्ताने, मास्क, चश्मा आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि रसायन का शरीर पर प्रभाव ना पड़े। दवा की अनुशंसित मात्रा का हमें अधिक या कम मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हम दवा मार्केट से लेके आ रहे हैं उनको पैकेट में जो दवा है उनको बच्चों के आसपास या घर में रखना चाहिए या उनको नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि रासायनिक विधि के द्वारा किसान जो सोयाबीन की फसल में जो भी हमारे खरपतवार उगते हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है, उनमें जो क्रॉप बी कंप्लीशन होता है वो 15 से 45 दिन के बीच में होता है। इस समय रहते हुए अगर हम खरपतवार का कंट्रोल कर लेते हैं तो उपज में 25 से 60% तक की उपज में वृद्धि होती है। साथ ही हमारे किसान भाइयों को सही मुनाफा मिल जाता है जिससे उन्हें उचित मात्रा में उपयोग मिल सके।
0: सुभैया रहो, याद राखियो।

0: समय पे निंदाई गुड़ाई करियो और सही दवाई डालत रहियो। सो देखो बहुत ही उम्दा जानकारी मिल गई। इस समय सोयाबीन में समेकित खरपतवार प्रबंधन पे विशेषज्ञ थे डॉक्टर मनोज कुमार तरवरिया। किसान भैया बहन हरो, आज अपन इंदौर मंडी के भाव के बारे में सोई जान ले में कि इस समय अनाजों के का भाव चल रहे हैं। गेहूं की बात करें तो लगभग 2400 रुपया से 2650 प्रति क्विंटल हैं और काबुली चना 7000 से 7150 रुपया प्रति क्विंटल चल रहा है और प्याज की बात करें तो 1100 से 1800 रुपया प्रति क्विंटल है। और भैया हरो, फिर अनाजों की गुणवत्ता के अनुसार भाव ते होते हैं तो इते इंदौर मंडी के भाव इस समय जे हते। भैया बहन हरो, अब बात कर लेते हैं खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य की, मौसम की। इस समय देखो खरीफ की फसलें एकदम बड़वार पे हैं। सो पहलो काम निराई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन को, काहे कि इस समय घास फूस बहुत ही उग जाऊ थे धान सोयाबीन उड़द मूंग में, तो 15 दिन में एक बार निराई गुड़ाई जरूर कर लियो। और दूसरो काम है ज्यादा वर्षा हो गई हुए तो खेतों में पानी की निकासी जरूर कर रही हो, नहीं तो देखो फसलों की जड़ें सड़ जाते हैं। और तीसरो काम का है भैया, बस वही हम बताए देते हैं, कीट और रोग की निगरानी इस समय बहुत ही जरूरी है। सो हफ्ता में 2 बार खेतों में जाके पत्ता पलट के देखियो, कीड़ा देखे तो तुरंत ही कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेके दवाइयों को छिड़काव करत रहियो। और भैया बहनहरो, याद रखियो निराई गुड़ाई निकासी निगरानी, तभी तो खरीफ की फसल बढ़िया हुई है, अच्छी हुई है। भैया बहनहरो, अब हो रही है जाबे की बेरा। सो हर मंगलवार गुरुवार शनिवार को संजा विरिया 7:30 बजे से सुनियो किसान वाणी कार्यक्रम। स्वस्थ रहे घर स्वस्थ रहे खेत, करियो हिलमिल काम। पुष्पा बहन की अब स्वीकारो, भैया बहनों राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोसी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के

0: आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BPN के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी NCP के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टरवीन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:05 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर सुनिए अपनी बोली मालवी में कार्यक्रम मालवी की तारी गूंज। रात 8 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर सुनिए आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से फिल्म

संगीत रात 8:45 पर सुनिए दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या, रात 9:00 सुनिए दिल्ली से अनुप्रसारित न्यूज़ एट 9, रात 9:15 पर सुनिए उर्दू समाचार, ठीक रात 9:30 पर सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश, रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता, रात 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, और रात 11:00 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे, रात 11:10 से सुनिए FM गोल्ड के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए आपको कल दिनांक 21 अगस्त सन 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह ठीक 5:50 पर प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। प्रातः 6:00 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। सुबह 6:05 पर विविध भारतीय मुंबई से सुनिए कार्यक्रम बंधनवार। सुबह 6:35 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान और ठीक 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। प्रातः 7:00 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:10 पर सुनिए भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। सुबह 7:20 पर सुनिए आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से अनुप्रसारित प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ठीक 8:00 सुनिएगा दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। कल सुबह 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। सुबह 9:30 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10:00 आप सुन सकेंगे उज्जैन विशेष कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। सुबह 10:30 पर सुनिए महिला श्रोताओं का पसंद का कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, कल दिन में 11:00 विविध भारतीय मुंबई से सुनिएगा कार्यक्रम रंग तरंग। दोपहर 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:00 आप सुन सकेंगे विविध भारतीय की गीतमाला। दोपहर 2:00 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित फिल्म संगीत। दोपहर 2:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और दोपहर 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर 2:30 पर पुनः विविध भारतीय मुंबई से सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोपहर 3:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। दोपहर 4:00 विविध भारतीय मुंबई से सुनिए कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। श्रोताओं, कल संध्याकालीन सभा में शाम 5:00 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए युवा श्रोताओं का पसंद का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 सुनिए कार्यक्रम भजन संध्या और शाम 6:30 पर फिल्म संगीत। शाम 7:00 दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 7:10 पर भोपाल से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनिएगा। शाम 7:21 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए कार्यक्रम माटेरी बात। कल रात 8:00 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 News@9। रात 9:15 पर उर्दू समाचार। रात 9:30 पर खेल पत्रिका और 9:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता और रात 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी। कल रात 11:00 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे और रात 11:10 से आप सुन सकेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं और थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ब्रिक्स के जरिए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में युवाओं से कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए की 2 औद्योगिक इकाइयों का किया शुभारंभ और प्रदेश के कॉलेजों में खाली सीटों पर 21 से 31 अगस्त तक विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत जन केंद्रित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने में भारत की प्रगति एक सतत और हरित दृष्टिकोण को मजबूत करती है। अपने लेख में पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वनरोपण, वन अग्नि प्रबंधन और आपदा प्रतिरोध क्षमता के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित अनुकूलन को प्राथमिकता दी है। श्री यादव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एक ऐसे भविष्य के लिए काम कर रहा है जो सामूहिक विकास में पृथ्वी को सर्वोपरि रखता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में आयोजित आरंभ परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को कृषि के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी आगे ले जाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से कौशल हासिल कर रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। समारोह में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 11,18,937 आवासों की स्वीकृति सौंपी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत देने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक बिहार में 50 लाख से अधिक पक्के आवास दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू होगी जिससे किसानों को फसल नुकसान की भरपाई मिल सकेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित 2 अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। प्रताप ग्रुप की इन इकाइयों में ऑप्टिकल फाइबर

और लिथियम बैटरी का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इन इकाइयों में युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दोनों इकाइयां आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली थी और अपनी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। जस्टिस दीपक रोशन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सफल उम्मीदवारों की याचिकाओं के बाद ये अंतरिम रोक लगाई। उम्मीदवारों का तर्क था कि परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है। राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का आज भोपाल में लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष शैभान सिंह पवैया ने वल्लभ भवन में वेबसाइट का लोकार्पण किया। प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर 21 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। इसमें विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 20 से 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट सूची 27 अगस्त को जारी होगी और 29 अगस्त को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों को 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम फेज 7 के लिए राज्यों की जोड़ी तय की है। इसके तहत मध्यप्रदेश को कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है जिसमें मध्यप्रदेश के लिए एसपीए भोपाल और कर्नाटक के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक को जिम्मेदारी दी गई है। युवा संगम का उद्देश्य युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपरा, विकास, तकनीक और लोगों से जुड़ने का प्रत्यक्ष अनुभव देना है। इसके तहत 5 से 7 दिन के शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। भारी बारिश के कारण सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों हनुमंतिया टापू, सैलानी टापू और ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर संचालित नावों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष समिति का गठन किया है। कटनी में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का आज शुभारंभ किया गया। वहीं छिंदवाड़ा में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आज समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। नीमच कलेक्टर और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में सीपीआर और फर्स्ट एड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने के लिए सशक्त वाहिनी निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। बैतूल में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले के चयनित क्लस्टरों और नगरीय निकायों में प्रत्येक शुक्रवार विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नुकसान भी हुआ है ना, ओला ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:21 हो चुके हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि, और समय हो चला है मालवी बोली और मालवी गीतों से सजे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज का। आज प्रस्तुत करता है लखन मालवीय।

समय पे खाद मिलेगी तो खेत मुस्कुराएगो, सूरज की रोशनी से घर आंगन जगमगाएगो, मच्छर के भगाओगा तो सेहत हुई जाएगी। इसी बात पे चलो आज का इन शो के जमाऊंगा। राम राम सा प्रणाम महारा देश का सभी प्यारा प्यारा भईना बहना और खेत उनमें पसीनों भई के पूरा देश को पेट भरने वाला महारा अन्नदाता यानी कि किसान भई ने प्यार भरो नमस्कार। मैं हूँ तमारो दोस्त, तमारो साथी, तमारो हम सफर और इन कार्यक्रम को उद्घोषक लखन मालवी और तम सुनी रहा हो आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज से तमारो पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। श्रोताओं, आज है 20 अगस्त और यह शाम कितनी सुहानी है, क्योंकि आज अपन बात करांगा अपनी मालवा की माटी की, अपना किसान बहना की, एक जबरदस्त खबर की और बात करांगा सूरज दादा के उन धूप की जो फोकट में बिजली देवे है। और हाँ, रात के कान उनका पास में ऐके गीत गई के अपनी नींद खराब करवा वाला उ जहरीला मच्छर की भी। तो चाय को कप हाथ में लेके बैठो और आराम से बैठी जाओ, क्योंकि आज मजो भी आवेगो और काम की बात भी मिलेगी। तो भाई ना, वक्त बदले है, मौसम भी बदले है, पर यादों को यो कारवा हमेशा मुस्कुराते रहे। सुरों को यो सफ़र यूं ही जारी रहेगा तो दिल थामी के बैठ जाओ, क्योंकि आज को सफ़र बड़ो सुहानो हो वालो है। तो कहीं जाओ जो मत, बने हो रहो जो आकाशवाणी उज्जैन का साथ, लीके अपनी दिल की बात। पीपल की वह छाँव पुरानी और पनघट को ऊ पानी, याद आवे वो खेत खलियान और अपना की मीठी वाणी। चाय की चुस्की संग चौपाल पे खबरें सुनी के होगी बात विचार, तो शुरू करा मालवी में आज का प्रदेश का समाचार।

नमस्कार, समाचार का साथ है, मैं लखन मालवी। सबसे पहला इन बुलेटिन का मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ऑप्टिकल फाइबर इकाई को शुभारंभ करियो। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने उज्जैन में भगवान महाकाल का दर्शन करके भस्मा आरती में भाग लियो। नीमच में दिव्यांग बच्चा उनका लिए मिनी जिम और थेरेपी सेंटर को शुभारंभ करियो गयो। अब समाचार विस्तार थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिला का पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित दो अत्याधुनिक औद्योगिक इकाई को शुभारंभ करियो। प्रताप ग्रुप की इन इकाइयों में ऑप्टिकल फाइबर और लिथियम बैटरी को निर्माण होएगो। मुख्यमंत्री ने क्यों है कि नई औद्योगिक इकाई से क्षेत्र में सैकड़ों युवाओं के रोजगार प्राप्त मिलेगो और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नई गति मिलेगी। उनने सरकार क्यों है कि सरकार को लक्ष्य निवेश का साथ साथ रोजगार का अवसर बढ़ाना है। इन इकाइयों में युवाओं को आधुनिक तकनीक को प्रशिक्षण भी मिलेगो। इन दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहा। अपना संबोधन में उन्होंने कहा कि दोनों इकाइयां आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा का

क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगी। राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को आज भोपाल में लोकार्पण करियो गयो। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में आयोग का अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने बल्लभ भवन में वेबसाइट को लोकार्पण करियो। इन मौका पे उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहो कि वेबसाइट से आयोग की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी और आम लोग उनके ऑनलाइन भी यह जानकारी प्राप्त होगी, वे अपना सुझाव भी एक पे दी सकेगा। उनने क्यों है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की मजबूत होगी। प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 26-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थी उनके एक और अवसर दियो है। प्रदेश का कॉलेज और स्नातक में स्नोकोत्तर पाठ्यक्रम में खाली सीटों उनके 21 से 23 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसिलिंग होगी। इनमें विद्यार्थी के पहला आओ पहला पाओ का आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं NCTE पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 20 से 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किया जा सकेगा। मेरिट सूची 27 अगस्त के जारी होगी और 29 अगस्त के सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों के 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने आज उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर का दर्शन किया, भस्म आरती में शामिल हुए और उनने विधि विधान से पूजा अर्चना करी के बाबा महाकाल को आशीर्वाद लियो। दर्शन का बाद मनु भाकर ने मंदिर की व्यवस्था और भक्तिमय माहौल की सराहना करी। झाबुआ में सशक्त वाहिनी की निःशुल्क कोचिंग में प्रवेश के लिए 23 अगस्त को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा का तैयारी के लिए बालिकाओं से 416 आवेदन प्राप्त हुआ है। परीक्षा सांदीपनी विद्यालय झाबुआ में सुबह 11 बजे से ऑनलाइन होगी। नीमच का कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बीते कल जिला का दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग बच्चों के लिए CSR से स्थापित मिनी जिम और थेरेपी सेंटर को शुभारंभ करियो। उनने केंद्र को निरीक्षण करके सुविधा की जानकारी ली और दिव्यांग बच्चों का कौशल विकास और आत्मनिर्भर के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रतलाम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट का खिलाफ कार्रवाई करता हुआ जावरा में ज्ञानी ट्रेडर्स को निरीक्षण करियो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ज्योति बघेल ने मिलावट की आशंका पर अंजनी बफेलो घी और एस कुकिंग मीडियम का नमूना लिया। मौका से 29,930 रुपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई। दो ही नमूना जांच के लिए भोपाल में राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजी दिया गया है। आगरमालवा में विधायक माधव सिंह गहलोत ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती का अवसर पर कलश वंदन यात्रा और समर सत्ता संकल्प अभियान को शुभारंभ करियो। उनने क्यों कि प्रदेश में सरकार संत रविदास जी के सामाजिक और समर सत्ता का संदेश के गांव गांव और जन जन तक पहुँचाई रही है। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगला 24 घंटे में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश की अलर्ट जारी कर दियो गया है। इन जिला में 8 इंच बारिश हुई सकती है। दतिया, भिंड, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, मेहर और सतना में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। 20 से 24 अगस्त का बीच में भारी बारिश को असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। ई था आज का प्रादेशिक समाचार।

साथियों, तमारा सगला को इन खूबसूरत शाम में फिर से स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन का खास कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज में। भाइयों, सबसे पहला बात अपना मध्य प्रदेश का किसान भाई उनका लिए एक बहुत बड़ी खबर। अपन सभी जाना है कि जब गेहूं, चना और सरसों की बुआई को टाइम आवे है, यानी कि रबी को सीजन, तो खाद की दुकान होन और सोसाइटी पे लंबी लंबी लाइन लगी जाए है। सुबह 4 बजे से किसान भाई ना लाठी लेके खड़ा हो जाए। एन मौका पे अगर खाद नहीं मिले तो बुवाई में लेट हुई जावे और किसान भाई चक्कर काटी काटी के परेशान हुई जावे। पर अब इन परेशानी के जड़ से खत्म करवा के लिए अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने आज 20 अगस्त 2026 से पूरा राज्य में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करी रियो है। इको नाम ध्यान से सुनजो, हर किसान हर घर हर खेत खाद अभियान। इन अभियान को सीधो सो फंडो है कि बुवाई का समय आने से पहला ही हर किसान का पास उका घर तक उका खेत पे सही टाइम पे खाद पहुंची जाए, ना लाइन में धूप में खड़ो रहवा पड़े और ना ही एन मौका पे दर दर भटकनो पड़ेगो। जब टाइम पे खाद मिलेगी तो फसल सही टाइम पे बोई जाएगी, तो पूरो मालवा और पूरो मध्य प्रदेश मुस्कराएगो। तो हमारा सभी

अन्नदाता भाईना, इन अभियान की बहुत बहुत बधाई। खेतों में फसल लहराएगी, खुशहाली की बहार आएगी और जब सही समय पे खाद मिलेगी तो किसान की किस्मत भी रंग लाएगी।

इसीलिए आज बात करनी जरूरी है अक्षय ऊर्जा दिवस की। अब तुम सोच ही रहा होगा कि भाई यो अक्षय कई होए, तो अरे दादा भैना अक्षय को मतलब होई है जो कदी छे नहीं होई है, यानी कि जो कदी खत्म नहीं होवे। सोचो यो कोयलो पेट्रोल डीजल ये सब तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर अपना मालवा की कड़क वाली सूरज दादा की धूप या कभी खत्म नहीं होगी, और बहने वाली वह ठंडी हवा, तो धूप से सौर ऊर्जा और ठंडी हवा से पवन ऊर्जा, यही अपना आने वाला भविष्य है। अगर आज अपना घर का छत पे आप सोलर पैनल लगवाओगा तो बिजली को बिल भी जीरो की तरफ आवेगो, और अपनी धरती माता भी धुआं से बची के चैन की सांस लेगी। तो आज इन दिन पे खुद से एक वादो करो कि बिना काम के पंखा लाइट नहीं चलावांगा और सूरज दादा की धूप को पूरा फायदा उठावांगा। सूरज की किरणें लाएगी रोशनी, हवा चले आएगी पवन चक्की, कोयला तेल भले ही खत्म हो जाए पर अक्षय ऊर्जा की गारंटी है पक्की।

0: श्रोताओं, हर महीना बिजली को भारी बिल के अगर तुम परेशान हो तो आज की विशेष चर्चा आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करी रहे हैं सोलर पैनल की, जो तुम्हारा छत पे लगे के तुम्हारे मुफ्त बिजली दे सकता है। इन तकनीक के आसान शब्दों में समझाने और सरकारी सब्सिडी को गणित बताने के लिए आज हमसे चर्चा करिए एमपीईबी के सहायक यंत्री श्री विकास करवाड़िया जी से। उनसे हुई बातचीत का अंश सुना।
1: महीने के अंत आते ही जब घर में बिजली का बिल आता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके घर का बिजली का बिल जीरो हो जाए, बिजली सीधे आसमान से यानी कि सूरज से मुफ्त में मिलने लगे तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सोलर पीवी सिस्टम और इस विषय पर ग्राउंड रियलिटी और असली गणित समझाने के लिए आज हमारे साथ बात कर रहे हैं बेहद खास मेहमान। इन्होंने सालों तक विद्युत विभाग में बतौर सहायक यंत्री के रूप में काम किया है, ग्रिड को बहुत करीब से संभाला है। हमारे साथ है सहायक यंत्री श्री विकास करवाड़े जी। सर, आकाशवाणी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सोलर पीवी सिस्टम क्या है और यह कैसे कार्य करता है?
2: देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो सोलर पीवी सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में कन्वर्ट कर दे। इसके मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सोलर पैनल जो छत पर धूप सोखता है। दूसरा होता है इन्वर्टर जो पैनल से बनने वाली करंट को हमारे घर में चलने वाली बिजली में बदलता है। और तीसरा होता है नेट मीटर जो यह हिसाब रखता है कि आपने कितनी बिजली बनाई है और कितनी ग्रिड मतलब की एमपीवी को आगे दी है।
1: जी सर, मतलब ये है कि उसका पूरा हिसाब यहाँ पर रहता है। सर, मेरा दूसरा सवाल था कि लोग अक्सर पूछते हैं कि सर बादल छा गए हैं या बारिश होने लगी तो क्या पंखे या टीवी बंद हो जाएंगे, इस डर को आप कैसे दूर करेंगे?
2: जी, यह एक बहुत आम डर है हर इंसान का, एक हर कॉमन व्यक्ति का। लेकिन आप बात समझिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज के जो आधुनिक सिस्टम है वे ऑन ग्रिड, यानी आपका घर सोलर और बिजली मतलब ग्रिड की बिजली दोनों से जुड़ा हुआ है। जब तेज धूप होती है तब सोलर से चलता है, जब बादल या रात होती है तो सिस्टम बिना एक सेकंड की देरी के भी डायरेक्टली ग्रिड से बिजली लेने लग जाता है। आपके टीवी, पंखे या कोई भी उपकरण कभी भी बंद नहीं होगा।
1: सर, इसमें एक और चीज कई बार होती है कि लोगों में कि मार्केट में तो कई तरह के सोलर पैनल है, लेकिन सही पैनल को हम कैसे पहचान सकते हैं?
2: जी, सही पैनल की पहचान बहुत ही आसान है। आजकल मार्केट में बहुत ठगी हो रही है। ठगी से बचने का सबसे आसान तरीका है आपका कि भारत सरकार ने ALMM लिस्ट में शामिल कुछ ब्रांड्स को शामिल किया है। मेरा सुझाव यही है कि आप जो भी पैनल खरीदें उसको पहले चेक कर लें कि ये ALMM लिस्ट में नहीं है। यह लिस्ट भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कंपनियों और पैनल की लिस्ट है, हमेशा इन्हीं को प्राथमिकता दें। एक और ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी बात है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड लोकल वेंडर से इंस्टॉलेशन का कार्य भारत सरकार द्वारा नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर से ही काम करें, ताकि आपको सिस्टम अच्छे से 25 साल तक चलने के लिए गारंटी मिल सके।
1: सर, मतलब आपका कहना यह है कि सरकार पोर्टल जो दिया है उस पर रजिस्टर्ड वेंडर से ही काम कराना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, आप रजिस्टर्ड वेंडर से काम कराएंगे तो आपको सिक्योरिटी भी रहेगी, प्लस उसमें सरकार की तरफ से आपको एक जो भी अनुभवी और जो अच्छे वेंडर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं वही आपके पास कार्य करने के लिए आएंगे।
1: सर, इसमें जैसा कई बार सुनने में आया था कि इसमें सब्सिडी भी मिलती है, तो जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो सब्सिडी है वो खाते में आने में कितना समय लगता है?
2: अगर आप रजिस्टर्ड वेंडर के थ्रू आते हैं और ALMM पैनल का यूज करते हैं तो ही आप सब्सिडी के लिए पात्र होते हैं। वैसे नई योजना जो आई है आपकी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना में सरकार ने प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया है। जैसे ही आपके सोलर पैनल लग जाता है, डिस्कॉम के अधिकारी आकर नेट मीटर इंस्टॉल कर लेते हैं और सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नेशनल पोर्टल पर अपने बैंक की डिटेल सबमिट करते हैं, मात्र 30 से 45 दिन के भीतर सब्सिडी की पूरी राशि आपके बैंक खाते में सीधे आ जाती है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है सर। सर, मेरा क्वेश्चन मिडिल क्लास फैमिली के लिए है कि अगर जब मध्यवर्गीय परिवार के लिए इस

0: में या अपने जो सोलर पैनल लगाने में कितना खर्च आएगा या पैसा कितने साल में वसूल हो जाएगा?
1: जी, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 3 किलोवाट का एक सिस्टम पर्याप्त होता है, जिससे लगभग 300 से 360 यूनिट तक बिजली बन जाती है। लगभग इसका जो कुल खर्च आता है वो 60 से लेके 190 के बीच में रहता है। इसको फिर से बोलूंगा, कुल खर्च लगभग 1,60,000 से लेकर 1,90,000 के बीच में सामान्यतया बैठता है। इसमें सरकार जो है 3 किलो 78,000 की सब्सिडी आपको उपलब्ध कराती है। आपको उपभोक्ता की जेब से सिर्फ और सिर्फ 80,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में राशि आती है। यह पूरा पैसा भी मात्र 3 से 5 साल के बीच में आपके द्वारा पूरी तरह से वसूल कर लिया जाता है। उसके बाद अगले 20 से 22 साल आपको जो बिजली मिलती है वो पूरी तरह से मुफ्त मिलती है।
0: सर, अगला सवाल था कि जैसे सोलर पैनल की जो साफ सफाई है या मेंटेनेंस को लेकर क्या क्या सावधानी रखना जरूरी है?
1: सोलर पैनल में कोई भी ऐसा पुर्जा नहीं होता है जो हिलता डुलता है या मूव करता है, इसलिए लगभग लगभग इसका मेंटेनेंस जो है वो शून्य है। लेकिन हाँ, पैनलों पर जो सोलर पैनल आपके छत पर लगे हैं उस पर अक्सर धूल लग जाती है, पर धूल जमने से बिजली बिना कम हो जाती है। इसके लिए सावधानी बस इतनी रखना है कि हर 10 से 15 दिन में सुबह या शाम के वक्त जब पैनल ठंडे हो, साफ पानी से इन्हें धो दें। सफाई करते समय वाइपर का इस्तेमाल करें, लेकिन पैनल पर कभी खड़े ना हो, ना ही कोई हार्ड केमिकल या सर्फ का इस्तेमाल करें।
0: मतलब सिंपल सी बात है कि आप केवल पानी से धोना जरूरी है।
1: सिर्फ पानी से धोना, आप एक ब्रश का यूज कर लें। ब्रश से क्या होगा कि एक अच्छे तरह से एक सॉफ्ट ब्रश का यूज करें। हार्ड ब्रशेस से उसके ऊपर स्क्रेच जाने की संभावना होती है, इसलिए आप सॉफ्ट ब्रश का यूज करें। किसी भी तरह का हार्डनर का उपयोग आपको नहीं करना।
0: सर, मेरा अंतिम प्रश्न था, आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से हमारे सारे श्रोता जो सोलर पैनल लगवाने से हिचकिचा रहे हैं या सोच रहे हैं कि सोलर पैनल लगवाना चाहिए या नहीं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब आप एक बार महंगे स्मार्टफोन या गाड़ियां खरीदते हैं, वह आपकी जेब से रोज पैसा खर्चा कराते हैं, लेकिन सोलर पैनल इकलौती ऐसी चीज है जो न सिर्फ पर्यावरण का फायदा कराती है, साथ ही आपकी छत पर लगकर रोज आपको कमा कर भी देती है। बिजली के दाम हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सोलर लगवाना कोई खर्चा नहीं है, एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट। सरकार अभी बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है, इस मौके का जितना जल्द हो सके आप फायदा उठाइए और अपने घर को आत्मनिर्भर बनाइए।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया कि सोलर पैनल सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारी जेब के लिए भी कितना फायदेमंद है। हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे डाउट जो है वो दूर करे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा विद्युत विभाग का सहायक यंत्री श्री विकास करवाड़िया जी, जिन्होंने बताया कि कैसे आप पीएम सूर्य घर योजना को लाभ उठा के अपना घर के रोशन कर सकता है और भारी भरकम बिजली बिल से आज़ादी पा सकता हो। तो देर किस बात की, आज ही सोचिए और सोलर की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाओ। अब बादलों को डर छोड़ो और पीएम सूर्य घर योजना को लाभ उठाओगा, क्योंकि अपना घर पे सोलर पैनल जरूर लगवाए होगा। तो भाई ना, आगे बढ़ने से पहला सुना एक और प्यारो सो लोकगीत।
3: हुए नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
4: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
3: क्या, कैसे?
4: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
3: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
4: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।

दोस्तों आज विश्व मच्छर दिवस भी है। अब तुम सोचोगा कि अरे भाई इन मच्छर उनको भी कोई धन हुए है कहीं आज इको बर्थडे मनानो है, इको कहीं केक काटना पड़ेगा। तो मारा श्रोता हूँ, इको बर्थडे नहीं मनानो है पर इनसे अपनी जान जरूर बचानी है। आकार में यो मच्छर भले ही अपनी उंगली का नाखून से भी घणो छोटो है पर जब मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया फैलावे है नी तो मोटा मोटा सुरमा उनके भी पलंग पे सुलई दे है। 1897 में आज ही कदन सर रोनाल्ड रास ने दुनिया के बतायो थो कि मलेरिया इन मादा मच्छर के काटवा से फैले है। तो आज को सीधो सो संदेश यो है कि घर का आसपास गमला हुन में, पुराना टायर हुन में या कूलर में पानी भरियो हो मत रख जो। रुक्यो हुआ पानी इन मच्छर के सबसे पसंदीदा पार्टी की जगह है। पानी साफ रखो, मच्छर भगाओ और डॉक्टर का खर्चो बचाओ। रातों के नींद उड़ावे ई मच्छर, बिना सुरताल के गावे ई मच्छर। हम ओढ़ी के सोई जावा चादर मगर कम भगत पैर पकड़ के काटे है ई मच्छर।

दोस्तों, बात बात में समय कब बीती गयो पतो ही नहीं चलियो। अब घड़ी की सुइयां कीरी है कि मैंने तुमसे विदा लेनी पड़ेगी। तो किसान को करो सम्मान, सौर ऊर्जा से बढ़ाओ शान, सफाई रखो आसपास और रखो अपनी सेहत को ध्यान। चलता चलता तीन बात की पक्की गांठ बांध लो। जो किसान भाई उनको दिल से सम्मान करो, बिजली बचाओ और सूरज की धूप को फायदा उठाओ जो। और तो और तीसरी बात, रात के सोवा से पहला मच्छरदानी लगाओ या मच्छर के भगावा वाली अगरबत्ती जलानो मत भूल जो। मैं हूं तुम्हारो दोस्त लखन मालवी, फिर मिलांगा इना टाइम पे इना चैनल पे। तब तक हंसता रहो जो, मुस्कुराते रहो जो और सुनता रहो जो FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन। जय राम जी की।

0: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ। श्रोताओं, रात के 8 बजने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम सुर्खियों में अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सिंगापुर में आज चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भाग लिया। ये सम्मेलन पहली बार 2022 में नई दिल्ली में, दूसरी बार 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बार 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये चौथा गोलमेज सम्मेलन है भारत और सिंगापुर के बीच और इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की ओर। इन नियमित मंत्री स्तरीय बैठकों के महत्व पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, आपसे सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि सिंगापुर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक बायला

0: बायलैटरल पार्टनर है और हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, और उस संदर्भ में इस गोलमेज सम्मेलन का क्या महत्व है?
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे आपने बताया, ये चौथा राउंड टेबल हो रहा है, आज के दिन अभी संपन्न हुआ है वहां पर सिंगापुर में। चार मंत्रियों का एक साथ आना और मिलना ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बिजी स्केड्यूल होते हैं, बहुत ही उनका जो टाइम टेबल होता है, कार्यक्रम होता है। इन सभी को मिलाकर, सभी को साथ में लाना, चार सिंगापुर के मिनिस्टर, हालांकि हमने देखा जो आज जो सिंगापुर में मुलाकात हुई है उसमें करीब 6-7 सिंगापुर के मिनिस्टर शामिल थे,
0: जी
1: और हमारी तरफ से तो जैसे आपने बताया ये चार मंत्री उसमें शामिल थे, तो इससे ये तो पता चलता है जो सिंगापुर अपने भारत के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है।
0: जी
1: दूसरी बात इसमें ये है, जो आसियान के जो 10 देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग है तो वो हमारा सिंगापुर के साथ है। करीब सिंगापुर भारत का, मैं कहूँ तो, छठा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है, और करीब हमारा $36 बिलियन उसके साथ द्विपक्षीय एक्सचेंज है, ट्रेड एक्सचेंज है। अगर इसको हम देखें इस परिप्रेक्ष्य में जो पिछले सालों में कितना ये और आगे बढ़कर उभरा है, तो मैं ये कहूंगा 2004-2005 में जब हमारे संबंधों को और आगे ले जाने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी, तो तब दोनों देशों के बीच का सहयोग था करीब $7 बिलियन, आज वो बढ़कर $36 बिलियन हो गया है। हालांकि इसमें ये भी देखना होगा जो हमारा आयात है सिंगापुर से वो कहीं ज्यादा है, निर्यात हमारा उसका करीब 50% है, करीब $24 बिलियन हम इम्पोर्ट करते हैं और करीब $11-12 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, वहां पर निर्यात है। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इतने छोटा देश है जिसके 6 मिलियन लोग पॉपुलेशन है सिंगापुर की, और वो हमारा छठा सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र है। आखिरी बात सोनू जी, मैं इसमें ये कहूंगा, जो अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए, अगर पिछले साल देखें तो करीब $19.8 बिलियन का निवेश सिंगापुर की तरफ से भारत में आया, वो करीब 1/4 निवेश है जो कि भारत को मिला पूरे विश्व से, तो उसमें 1/4 हिस्सा सिंगापुर का था। अगर आप देखते हैं 2018 से, तो सिंगापुर प्रथम श्रेणी पर आता है जहां से निवेश भारत में आया है। और आखिरी बात निवेश के बारे में कहूं, अगर 2000 से लेकर 2026 तक भारत में सिंगापुर से निवेश आया है करीब $200 बिलियन, जितना भी हमारे पास निवेश आया है $800 बिलियन का इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में, तो उसका 1/4 हिस्सा सिंगापुर से आया है। तो इसीलिए व्यापारिक क्षेत्र से, निवेश क्षेत्र से, उसके बाद हम अब आजकल की जो और महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, इन सभी क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो चौथा इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल आज हुआ है, उसका यही उद्देश्य है इन संबंधों को और आगे ऊंचाई पर हम इसको लेकर जा सकें।
0: सो एम्बेसडर सज्जनहा, जैसे आपने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं उन पर सहयोग बढ़ाने की खास तौर से आज बात हुई है। जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत जैसे आपने कहा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक, डिजिटलाइजेशन, AI गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, सो आपको लगता है कि ये सारे जो हाई टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं इनमें हमारा जो आपसी सहयोग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें हमने सिंगापुर के पे नाओ के साथ 3 वर्ष पहले एक समझौता किया, जो पहला देश था जिसके साथ हमने ये किया। सो आपको लगता है कि हमारे डिजिटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रगाढ़ संबंध की पोटेंशियल है?
1: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, आपने जिक्र किया है दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी 2024 में, जब प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर में यात्रा हुई थी, और फिर पिछले साल जब वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत आए थे, तो उन्होंने यही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था, और उसमें हमने करीब 8 ऐसे क्षेत्र धारित किए थे, और उसमें सभी ये जो आपने बताया है, डिजिटलाइजेशन है, ग्रीन एनर्जी है, हेल्थ केयर, मेडिसिन है, सस्टेनेबिलिटी है, ये सभी चीजें उसमें शामिल होती हैं। और आज

0: की जो मुलाकात हुई है भारत के 4 मंत्री और वहां से करीब 6-7 मंत्री सिंगापुर से, तो उनमें इसी को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 2 वहां पर MOU भी साइन किए गए हैं मैरिटाइम हेरिटेज के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर, लेकर कैसे इनको और आगे बढ़ाया जाए। परंतु मैं कहूंगा जो इसमें बातचीत तो होती रही है, परंतु एक जो बहुत जोरदार कदम लिया गया था वो जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 में
1: जी
0: सिंगापुर गए थे, तो उन्होंने उस समय शुरुआत हुई थी जो कैसे हम अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें, और वहां की एक बहुत बड़ी कंपनी है AEM जिनके साथ सेमीकंडक्टर कंपनी, वहां पर उन्होंने विजिट किया था। उसमें उनके साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग भी गए थे वहां पर, और दोनों देशों ने यही बात की जो कैसे दोनों देशों के सहयोग इस क्षेत्र में जो अपना नए तकनीकी क्षेत्र है, हाईटेक क्षेत्र है, उसमें आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में हमारा सहयोग अच्छा बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है। परंतु अब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, AI का जमाना है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सब का जमाना है, और इसमें सिंगापुर ने बहुत अच्छी महारत हासिल की है, तो इसको कैसे आगे लेकर जाया जाए। पिछले 3 सालों में हमने देखा है जो काफी प्रगति की है, और आज की जो मुलाकात हुई है उसमें भी इसको काफी आगे लेकर जाया जाएगा। और एक बात मैं इसमें कहूं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की आपने बात की है, आपने फिनटेक की बात की है, तो हमारा जो UPI है और उनका जो पे नाउ है, पहला देश था ऐसा जिसके साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और अब तो UPI बहुत प्रचलित हो गया है। मेरे विचार से 20 देशों से ज्यादा में उसे हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। परंतु जिसे कहा जाए ये जो रास्ता सीधा सामने देख किया गया था, ये सिंगापुर के साथ हमारे सहयोग के साथ ही किया गया था।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आज जो उभर के आया तथ्य कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति दी जाएगी, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है स्किलिंग, ये जो अब नई उभरती टेक्नोलॉजी है उसमें?
0: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्किल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र उभर कर आया है, और उनके जो लीडर ऑफ द डेलीगेशन, जैसे हमारे यहाँ से निर्मला सीतारमन जी हमारी डेलीगेशन को लीड कर रही थी, और उनकी तरफ से जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैन किम यांग हैं, उन्होंने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि अगर वहां पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी की सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, सहयोग को बढ़ाते हैं, तो अब बहुत सारी सिंगापुर की कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पर निवेश किया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें मैं ये भी बता दूं जो हमारी तरफ से अभी 2 साल पहले हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोला है, जिससे कि और ज्यादा वहां से निवेश हो सके भारत में, वहां से इन्वेस्टमेंट हो सके, और अलग अलग वहां की सिंगापुर की कंपनी भारत में आकर अपने को स्थापित कर सके और दोनों देशों के सहयोग को आगे ले जा सके। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट में ये बिल्कुल जैसे कहा जाए इंडस्ट्री बेस्ड एक एक्टिविटी इनिशिएटिव होगा, जो जो भी इसमें इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो जो कंपनीज आ रही हैं, वो अपने लोगों को कैसे स्किल किया जाए, उसमें सिंगापुर बहुत हमारी सहायता कर सकता है और कर रहा है। इसको और आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास और चाहे क्षेत्रों में, जैसे आपने बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमने बहुत प्रगति की है, परंतु और जो बहुत क्षेत्र हैं जैसे ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, AI है, इसमें हमने अपने को स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हमको जोर देना है, जो कि हम सिंगापुर के सहयोग से बिल्कुल कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और सिंगापुर भी इसमें बहुत ही तत्पर प्रतीत होता है, क्योंकि वो भी देख रहा है जो भारत एक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, हालांकि हमने देखा है विश्व में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बदलाव आ रहा है, परंतु फिर भी भारत का जो दर है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ रही है वो काफी मजबूत है, और यह देखते हुए सिंगापुर भी चाहता है जो भारत के साथ सहयोग को और तेज किया जाए और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए।
1: जी बिल्कुल, कुछ आंकड़े हैं कि लगभग 9,000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में हैं, 6 हमारे पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स हैं, 10 बैंक हैं, और सिंगापुर की भी 4 से 40 ज्यादा कंपनियां भारत में हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं इन्वेस्ट इंडिया को लेकर या स्किलिंग को बढ़ाने के

0: बायलैटरल ट्रेड आपको लगता है इससे बढ़ेगा? और जो ये आपसी संबंध है, जो प्रेजेंस है सिंगापुर की भारत में, भारत की कंपनियों की सिंगापुर में, इसमें और हम बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी, मेरे विचार से बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, हमारी करीब 9,000 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। इसके अलावा हमारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स हैं बहुत मात्रा में वहां पर। सिंगापुर के बैंक्स भी यहां पर हैं, जैसे DBS है जो कि वहां का सबसे बड़ा बैंक है, काफी यहां पर भारत में भी विस्तार कर रहा है। तो इसीलिए, और ये जो इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस है, ये वही है जो इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, परंतु सिंगापुर कंपनीज भी यहां पर हमको लेकर आनी है। और इसीलिए अगर आप देखें जो इसका अनुपात 9,000 है भारतीय कंपनी वहां पर और करीब 440 कंपनी है सिंगापुर की जो भारत में है, और भारत इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर यकीनन और भी सिंगापुर कंपनी आएंगी, तो उनके अपना फायदा होगा, और मैं ये कहूंगा जो भारत का भी फायदा होगा, क्योंकि भारत में अगर निवेश होता है, भारत में अगर नई कंपनी इस्टैब्लिश होती है, न केवल स्टॉक एक्सचेंज में करें, न केवल स्टॉक मार्केट में करें, परंतु वहां पर कोई नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर उसमें निवेश किया जाए, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो कि हमको चाहिए, और हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। तो इसी क्षेत्र में बात की जा रही है जो वहां से जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, और जो सेमीकंडक्टर हैं, और जो नए एडवांस्ड एरियाज हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उन सभी में भारत में आया जाए, सिंगापुर कंपनीज को यहां पर लाया जाए। कनेक्टिविटी की एक और बात है, जैसे हम केवल फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, हालांकि फिजिकल कनेक्टिविटी के बारे में भी आज बात हुई, जो कैसे सिविल एविएशन से और ज्यादा फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में हो सकती हैं, परंतु उसके अलावा चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर्स हो, इन सब प्रकार की कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में और ज्यादा जोड़ना और ज्यादा आगे ले जाना, मेरे विचार से ये दोनों देशों के हित में होगा, और इसी के बारे में आज बातचीत हुई है। अगले कुछ सालों में हमें इसके जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, भारत और सिंगापुर के उभरते द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। रात के 8:15 हो चुके हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस रूहानी सफर में। आइए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले गीत से, जो है फिल्म पाकिजा से, गायक लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार कैफी आजमी के बोल और संगीत गुलाम मोहम्मद का।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं सुनिए यह अगला गीत फिल्म चोरी चोरी से, गायक लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज, गीतकार शैलेंद्र के बोल और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, फिल्मी संगीत के सफ़र में अगला गीत हम सुनते हैं फिल्म गाइड से। गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार शैलेंद्र के बोल और संगीत SD बर्मन का।

0: श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन से रेडियो साथी दृष्टि के साथ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत के इस सफर में अगला गीत फिल्म दिल्ली का ठग से गायक किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़, गीतकार शैलेंद्र के बोल और संगीत रविशंकर शर्मा का।
1: ये रातें, ये मौसम।

श्रोताओं, इस मधुर गीत के बाद अगला गीत सुनिए फिल्म हम दोनों से, गायक मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़, गीतकार साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत निर्देशन जयदेव का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के सफ़र में ढलती रात के साथ अगला गीत सुनिए। फिल्म दिल एक मंदिर से गायक लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार शैलेंद्र के बोल और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, आज फिल्म संगीत के सफर को इस मधुर गीत के साथ यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नए गीत और नई बातचीत के साथ। आपकी रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति। FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, रात के 8:45 होने को हैं और कुछ ही देर में समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के

0: आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर

0: बनाना है।
1: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक

0: एक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलबर्टो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9।
4: The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and Food Safety Officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at

0: 27,538. The Nifty surged 154 points to settle at 24,232. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over Madhya Pradesh for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and parts of Northeast India tomorrow. The Met Department predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Jharkhand, Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. For Delhi, IMD has forecast a generally cloudy sky with one or two spells of light rainfall at many places during early morning tomorrow. On to sports. In hockey, the Indian women's team has advanced to the second round of the AFIH World Cup after playing out a goalless draw against England in their final Pool D match at Amstelveen in Netherlands. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defence holding firm throughout the contest. India stopped multiple penalty corners from England, especially during a tense second half. The draw helped India, led by Salima Tete, sealing a vital second-place finish in Pool D. The Indian team will now look to build on its strong defensive performance as it enters the second phase of the World Cup, with tougher challenges ahead in the knockout stage. In badminton, India's women's doubles duo of Trisa Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat 7 seeds Rin Iwanaga and Kei Nakanishi of Japan in straight games 21-16, 21-12. Former world champion PV Sindhu lost to 3rd seed Wang Ziyi of China in the women's singles pre-quarterfinal match 11-21, 21-15, 17-21. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protests across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर दाखला अमित शाह ने ऐलान किया है कि मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तहकीकात के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने 11वें से 13वें जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर इम्तिहानात को मनसूख करने के रियासती सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। मरकज ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है ताकि कौमी राजधानी की सबकी शमूलियत वाले और आलमी दर्जे के एक शहर के तौर पर काया पलट की जा सके। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया है। और हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने नीदरलैंड में आलमी कप के पूल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल के मैच ड्रा होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच कायम करने की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए इंसाफ तक रसाई में नुमाया बेहतरी आएगी और उन्हें कानूनी खिदमात हासिल करने के लिए दरकार वक्त कम होगा। जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि हुकूमत लद्दाख की हम जहत तरक्की और वहाँ के शहरियों के लिए आईनी तहफ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क

0: दीगर मकामात पर तलबा के एहतिजाज के दौरान पेश आने वाले तशद्दुद के इल्ज़ामात की आज़ादाना तौर पर जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की सरबराही में एक 5 रुकनी आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी HPEC तश्कील दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी को खासतौर पर इन इल्ज़ामात की जांच करने की हिदायत दी गई है कि पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने मुजाहिरीन के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ मुजाहिरीन की जानिब से सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ मुबैना तशद्दुद और इन अहलकारों को पहुंचने वाली चोटों की भी तहकीकात की जाएंगी। मज़कूरा कमेटी के दिगर अरकान में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस शालेंद्र कौर, CBI के साबिक डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP डॉक्टर LR बिश्नोई शामिल हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुल्कगीर तलबा एहतजाज से मुतालिक कई अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म जारी किया। अदालत आलिया ने कमेटी को अपनी इब्तदाई तहकीकात और नतायज पर उबूरी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में तलबा के एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद से मुतालिक अर्जियों की समाअत हो रही थी। ये एहतजाज मुबैना पेपर लीक के खिलाफ किए गए थे। दिल्ली से स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए महताब आलम।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने आज अगले अहकाम तक रियासती सरकार के 11वें से 13वें JPSC सिविल सर्विस इम्तहान के जरिए की गई तकर्रियों और फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती को मंसूख करने के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन ने इम्तिहानात और तकर्रियों को मंसूख करने से मुतालिक रियासती सरकार के मंगल के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली 3 अलग अलग अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए ये हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी है कि मुंतखब उम्मीदवार बहाल रहेंगे। उसने ये भी कहा कि उन्हें फितरी इंसाफ के उसूलों और बाज़ाब्ता तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने रियासती हुकूमत और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC से जवाब तलब किया है और अगली समाअत के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। 2 अर्जदाश्तों में 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सर्विस इम्तहानात और तकर्रियों की मनसूखी को चैलेंज किया गया था, जबकि तीसरी अर्जदाश्त का ताल्लुक फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती से था। अर्जी गुजारों के मुताबिक 11वें से 13वें JPSC इम्तहानात के जरिए 342 मुंतखब उम्मीदवार फिलवक्त सर्विस में हैं। रियासती हुकूमत ने इम्तहानात के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों और TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL के सिलसिले में CID की तहकीकात की बिना पर इम्तिहानात और तकर्रियों को मनसूख कर दिया था। हुकूमत ने 22 इम्तिहानात को मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और 6 इम्तिहानात को होल्ड पर रखा था। 17 इम्तिहानात की तहकीकात करने को कहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स सदारत अवाम मरकूज आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई के जरिए पायदार तरक्की में पेशरफ्त कर रही है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा एक मजमून को शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अखराजात की शिद्दत में कमी और गैर रिवायती तवानाई की सलाहियतों में इजाफे के ताल्लुक से भारत की तरक्की एक पायदार और सब्ज अंदाज नज़र को तकवीत अता करती है। जनाब मोदी ने पायदार तर्ज जिंदगी, शजरकारी, सर्कुलर मईशत और मुआशरे पर मबनी तताबुक पर हुकूमत की जानिब से तवज्जो मरकूज किए जाने को भी उजागर किया। हुकूमत ने इस बरस 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल DGFT ने आज जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र टैरिफ की शरह के एक कोटे TRQ के तहत 10 लाख मीट्रिक टन खाम शकर की दरामद की इजाज़त होगी। ये कदम त्योहारों के सीज़न से पहले सामने आया है, जब शकर की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है और घरेलू बाजार में सप्लाई के मुतालिक तशवीश पैदा हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शकर बनाने वाला मुल्क है। जुनूबी इलाकाई कौंसिल की 31वीं मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में वज़राए आला और आला हुक्काम को खित्ते की तरक्की, पेशरफ्त और मुश्तरका मफादात से मुतालिक तरजीहात और मसाइल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम हुआ। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन, कर्नाटक के वजीर आला DK शिवकुमार, केरल

0: के वजीर आला सतीशन, तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमरका और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग में शिरकत की। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान निकोबार जजायर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ वजारतों के आला हुक्काम भी मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग में शुरका ने सेहत के शोबे के लिए फंडिंग, बुनियादी ढांचे, माहौलियाती तहफ्फुज़ और इलाकाई सिक्योरिटी के बारे में इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। मीटिंग में मुतअद्दिद मसाइल पर बंद कमरे में बातचीत हुई, जबकि शुरका ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीटिंग के नतीज पर इत्मीनान का इजहार किया। भारत और जापान के वज़राए दिफा की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जापान के उनके हमनसब शिंजिरो कोइज़ोमी ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में बहरी सलामती को मजबूत बनाने, मेक इन इंडिया के तहत दिफाई टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक एतमाद में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए दिफा ने बहरी सिक्योरिटी के शोबे में तआवुन से मुतालिक एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। अपने इफ्तिताही कलिमात में राजनाथ सिंह ने कहा कि एशिया की दो बड़ी जमहूरियतों भारत और जापान की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत के महासागर विजन और जापान के आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल पहल के दरमियान करीबी तालमेल पहले से कहीं ज्यादा अहम है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: जापान के वजीर दिफा शिंजिरो कोइज़ोमी ने कुमामोटो इलाके में जलजले से मुतासर अफराद से इजहार ताजियत पर भारत का शुक्रिया अदा किया। देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पटना में फैजयाब होने वालों के लिए तामीर किए गए 2,35,000 मकानात की चाबियां सुपुर्द की। बापू सभागार में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में जनाब चौहान ने नए मुंतखब शुदा फैजयाब होने वालों को मंजूरी के खतूत भी तकसीम किए। वजीर आला सम्राट चौधरी, नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और देही तरक्यात के वजीर श्रावण कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। ये आकाशवाणी है। हुकूमत ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का इजरा किया। ये मास्टर प्लान दिल्ली को आलमी एतबार से मुकाबला जाति, माहौलियाती एतबार से मजाहिम और सबकी शमूलियत वाली राजधानी के तौर पर तब्दील करने के सिलसिले में एक तवील मुद्दती मकानी शऊर का हामिल इक्तसादी और इदारा जाति खाका मुहैया करता है। ये दिल्ली की फरावा तारीखी और सकाफती विरासत को महफूज रखते हुए इक्तसादी हमाजहती, तकनीकी इख्तिराआत और तर्ज जिंदगी के आला मेयारात को यकजा करता है। दिल्ली 2047 के लिए मास्टर प्लान विकसित भारत 2047 के तसव्वुर से मुताबिकत रखता है, जिसका मकसद कौमी राजधानी को आलमी दर्जे का, सबकी शमूलियत वाला और इक्तसादी एतबार से दरख्शां शहर में तब्दील करना है, जिसमें तकरीबन 3,20,00,000 लोग रह सकें। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में मनसूबाबंदी के दो अलग अलग अंदाजे नजर अख्तियार किए गए हैं। मौजूदा तामीर शुदा यानी ब्राउन फील्ड इलाकों की तामीर नौ और नए तामीराती यानी ग्रीन फील्ड इलाकों के लिए राइट ऑफ वे पर मबनी मनसूबाबंदी को अख्तियार किया गया है। ब्राउन फील्ड तामीर में रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के मुश्तरका इस्तेमाल यानी ट्रांजिट ओरिएंटेटेड डेवलपमेंट, मुश्तरका इस्तेमाल में आने वाली तामीरात और बुनियादी ढांचे के फरोग पर तवज्जो की जाएगी, जबकि ग्रीन फील्ड इलाकों में लैंड पोलिंग और निस्बतन कम घनी वाली इलाकों के लिए के जरिए सड़कों के कनेक्टेड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। मजमूई तौर पर ये दोनों अंदाजे नज़र ज़मीन के मुनासिब इस्तेमाल, शहर के अंदरून और दीगर शहरों से मजबूत कनेक्टिविटी और तालमेल पर मबनी पायदार तरक्की फ्राहम करेंगे। इस मंसूबे में अवाम को शहरकारी की मनसूबाबंदी में मरकजी मुकाम पर रखा गया है, जिसमें नौजवानों, खवातीन, बच्चों, मुअम्मर शहरियों और माजूर अफराद की उमंगों पर खसूसी तवज्जो की गई है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: प्लान के इजरा

की तकरीब के दौरान मकानात और शहरकारी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने बताया कि आने वाले बरसों में तकरीबन 40 लाख मुनासिब कीमत पर दस्तियाब मकानात का इजाफा किया जाएगा, जिनमें से एक बड़ी तादाद मेयारी रिहायशी यूनिटों की होगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद शहर की वसी आबादी के रिहायश से मुतालिक मांग को पूरा करना है। अपने मकसद के मुताबिक अगर प्लान पेशरफ्त करता है तो बड़ी तादाद में लोगों को मकानात के नए ऑप्शंस तक रसाई हासिल होगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने बताया कि कौमी राजधानी के अवाम इस मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली 1484 मुरब्बा किलोमीटर का अहाता करती है और इसके अंदरून इसकी अपनी बहुत सी हदूद पाई जाती हैं। ताहम उन हदूद को जहन में रखते हुए ये प्लान इस तरह वजह किया गया है कि जिसमें देही इलाकों, अनऑथोराइज कॉलोनियों और मनसूबा बंद इलाकों का अहाता करते हुए पूरे शहर की मजमूई तरक्की को यकसां तौर पर यकीनी बनाया जा सके। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के सीनियर लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया। 78 साल रहनुमा ने मुल्क की पार्लियामेंट जातीय संसद में मुनक्किद हुई सदारती इंतखाबात में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने साबिक फौजी ऑफिसर ओली अहमद को शिकस्त दी। ओली अहमद को बांग्लादेश की जमात इस्लामी और तलबा की क्यादत में मुल्क की पहली सियासी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी NCP की क्यादत वाली 11 पार्टियों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत हासिल थी। उन्होंने 88 वोट हासिल किए। हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने नीदरलैंड में FIH आलमी कप के पूल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल किए मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। दोनों ही टीमों ने अपने लिए कई बार मौके बनाए लेकिन वो गोल करने में नाकाम रहीं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तहकीकात के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC और फूड सेफ्टी ऑफिसर इम्तिहानात को मनसूख करने के रियासती सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। मरकज ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है ताकि कौमी राजधानी की सबकी शमूलियत वाले और आलमी दर्जे के एक शहर के तौर पर काया पलट की जा सके। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म की बहुत ही खूबसूरत गजल आशा भोसले की आवाज में। शहर यार की बोल हैं और धुन मनाई है खयाम ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मजरूह का लिखा हुआ गीत। गुलाम मोहम्मद ने इसे संगीत से सजाया है। फिल्म का नाम है पाकीज़ा और आवाज़ लता मंगेशकर की।

मुकेश की आवाज़ में आइए सुनते हैं साहिर का लिखा हुआ गीत, खयाम की बनाई हुई तर्ज़ें। फिल्म का नाम है कभी कभी और आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे अभिमान फिल्म का गीत। मजरूह के बोल थे और संगीत था एसडी बर्मन का। आपके रेडियो सेट पर आ रहा है अगला गीत। फिल्म शराबी से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें अनजान का गीत है और संगीत बप्पी लहरी का।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज में प्यासा सावन से। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं धामणी मनोरा से, तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत्र डेरे ने, और इसी गीत को पसंद किया है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज शिमाली ने।

डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये, छत्तीसगढ़ दंतरेगी से भागवत वर्मा, लिवई वर्मा और गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चंडोरगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। हमारी सभी श्रोता सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है शिव हरी ने।

बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर, और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचालिया, प्रियंका पंचालिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचालिया। हमारे सभी श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं फिल्म तुम्हारे लिए का बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में और संगीत से सजाया है जयदेव ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ है। इस गीत को लिखा है गौहर कानपुरी ने और तर्ज बनाई है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बाजीगर फिल्म की सिंगापुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची नीमा, और इसी गीत को पसंद किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म बंटवारा से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ है, मजरूह का गीत है और संगीत एस मदन का। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है कालका से शुभ चंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67, मोहाली, पंजाब से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। एक और पत्र हमारे हाथ में है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, बीबी आरजू जाजौरिया। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर प्रभा आत्रे का ख्याल गायन, राग है मधुमंती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभा आत्रे का ख्याल में राग मधुवंती। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ 3री उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर